फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक

0: वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मयोन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: विश्व के इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके अध्ययन, चिंतन एवं मनन करने से हमारा जीवन निश्चित ही बदल सकता है। छत्रपति शिवाजी के समक्ष उनके सिपाहियों ने भेंट स्वरूप एक सुंदर यवन कन्या को प्रस्तुत किया। उसे देखकर महाराज शिवाजी के नेत्र श्रद्धा से झुक गए एवं हृदय में मातृत्व भाव जागृत हुआ। वे बोले, काश मेरी माँ भी ऐसी होती तो मैं भी सुंदर होता। उन्होंने सिपाहियों को तत्काल आदेश दिया कि इन्हें सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुँचा दें। हमारी भावनाएं ही हमें अच्छा और बुरा बनाती हैं। सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, तुकाराम आदि के जीवन में भी परिवर्तन हुए, जिसके पीछे कोई न कोई घटना अवश्य जुड़ी हुई है। पत्नी के स्नेह के अनुरक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक बार की फटकार से परिवर्तित हो गया, यह बात सर्वविदित है। अगत आपको दौरे आउ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम महम, होत न तव भवभीति। परिणाम यह हुआ कि वे राम के अनन्य भक्त हुए और विश्व साहित्य को रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसा अमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही एक बार सिद्धार्थ अपने राजमहल से रथ पर बैठकर बाहर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसकी कमर झुकी हुई, शरीर में झुर्रियां पड़ी, अत्यंत क्षीणकाय अवस्था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्तर मिला, यह वृद्ध है। क्या एक दिन मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा? उत्तर में सारथी ने कहा, संसार में सबकी यही दशा होती है। फिर आगे बढ़े तब उन्हें एक शव दिखाई पड़ा। कुछ व्यक्ति राम नाम सत्य है कहते हुए कंधे पर मृतक को लेकर श्मशान की ओर चले जा रहे थे। प्रश्न किया, यह क्या है? यह मनुष्य है, इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए दाह संस्कार करने इसे ले जा रहे हैं। क्या मैं भी मरूंगा? हाँ, सभी को एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर राजभवन से प्रस्थान कर गए। में वे ही भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रकार महावीर स्वामी के जीवन में भी परिवर्तन हुआ था। घटनाएं कुछ भी हों पर वे जीवन का पाथे बन गई। अभिप्राय क्या है? आज भी हम इस प्रकार के दृश्य देखते हैं। पत्नी की फटकार

0: किसे नहीं मिली होगी, पर हम में परिवर्तन क्यों नहीं आता? चिंतन करें तो यह तथ्य उजागर होता है कि हमारे जीवन में सद्गुरु की कमी और चिंतन का अभाव है। हमें सांसारिकता ने इतना अधिक जकड़ लिया है कि उसके आकर्षण और बंधन से छूटना दुष्कर हो गया है। यह संभव होगा जब हमारी चित्त की वृत्ति ईश्वरोन्मुख होगी, तभी मन शांत और स्थिर होगा।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा द्वारा गाए भजनों को।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा

0: सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जाँचने के लिए।

0: आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आज आपने सुना अनूप जलोटा द्वारा गाए भजनों को। और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, जिसमें आज चर्चा का विषय है बकरियों में होने वाले चेचक की पहचान।

संगियो, बकरी पालन छत्तीसगढ़ मा बढ़िया आय के साधन हावे। गरीब के गाय भी कहा जाते बकरी पालन ला। बकरी पालन मा नाना प्रकार के संगवारी हो, ओकर जो प्रजाति हावे वो प्रजाति ला पाल करके किसान भाई बढ़िया आमदनी प्राप्त करते। लेकिन संगियो, हमन देखा थन कि बकरी पालन में जागरूकता के अभाव मा कई प्रकार के संक्रमण के कारण ले संगवारी हो बकरी मन बीमार ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसने में आज हमन चर्चा करबो बकरी में चेचक, जो ला कहते हैं गोट पॉक्स। ये बकरी के घातक और बहुत संक्रामक विषाणु जनित रोग हावे, जो नर की पॉक्स नामक जो विषाणु रहते एकर डहाले फैल थे। ये रोग के कारण मांस मा, चमड़ी मा, गोरस उत्पादन मा, ये तीनों मा प्रभाव देखे पर मिलते। और ये तीनों से ही संगी हो हमार आर्थिक वृद्धि होते, और ये तीनों प्रभावित करते तो हमार आर्थिक दृष्टिकोण से हानि होती। तो बकरी के चेचक गोट पॉक्स जो ला कहा जाते, एकर कारण होते जो रोगी पशु रहते विषाणु ले या दूषित पदार्थ के संपर्क में आते तब यह संक्रमित होते। हवा के डहाले भी एकर विषाणु फैलते और पशु के भीतर में प्रवेश कर जाते। ये रोग के संचरण में रोगग्रस्त बकरी हावे, दूषित चारा हावे या भोजन या मल, ये मन के माध्यम ले यह संकरित, ये मन के माध्यम से संचरित होते फाइल थे। तो एकर कारण का दिखते, अगर बकरी में चेचक गोट पॉक्स हुआ थे तो तेज बुखार होते, 104 ले 107 डिग्री फारेनहाइट तक ओकर बुखार बढ़ जाते, तापमान बढ़ जाते, आंखी और नाक ले संगवारी हो चिपचिपा पदार्थ निसरे लागते, आंसू निसरे लागते, बकरी खाना पीना ला छोड़ देते और सांस और तेज चलते, त्वचा में लाली युक्त दानादार जो फुंसी है या माता जैसे लक्षण है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ते और फिर वो पपड़ी में बदल जाते, और जब और

पपड़ी में बदलते तो संगी हो वहां जैसे पीड़ा होते और जो मक्खी है वो भी आके बैठते और असहनीय पीड़ा होते। तो एकर से पशु जो बकरी रहते ओकर पूरा शारीरिक और जो विकास है वो विकास और अवरुद्ध हो जाते। तो हमला जब भी गोट पॉक्स या बकरी में चेचक के समस्या देखा थे, बकरी में चेचक के समस्या दिखा थे, तो हमला रोगी जो बकरी हावे जो छेरी भेड़ी हर अगर स्वस्थ हावे दिखा थे वैसे तो वाला हमला अलग रखना चाहिए। और जो भी उमन के मचान बनाथन, कोठा बनाथन, पशुशाला बनाथन, रहे के ठौर बनाथन, ओकर साफ सफाई भी करना चाहिए। हमला हर एक बछर टीकाकरण करवाना चाहिए। उपचार अगर हमर से हो पाते आप मन जानकार हवा, विशेषज्ञ से प्रशिक्षण प्राप्त कर ले हवा तो कर सकता, लेकिन ज्यादा जानकारी पर आप मनला तुरते उपचार पर आप मन के लखठा के पशुपालन विभाग पशु चिकित्सालय ले संपर्क करना चाहिए। बकरी पालन में बात करते हैं तो अपन जमुना पारी, बरबरी, बीटल, सिरोही, ब्लैक बंगाल ये सबो जो नस्ल हावे संगवारी हो काफी लाभप्रद हो से हमारे क्षेत्र पर हमारे छत्तीसगढ़ में ये मन के विकास काफी ज्यादा देखा गई से। तो आप मन जमुना पारी के बढ़िया नस्ल के बकरी पालन कर सका था और ज्यादा दूध भी देते। एकर अलावा बरबरी होते छोटे आकार के होते तो इला पाले में भी आसानी होते। सिरोही होते जो उनकी गुजरात और राजस्थान में ज्यादा मिलते यार भी दूध भर और मांस भर सुघर रही थे। ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते मांस एकर स्वादिष्ट होते। तो आप मन जो भी आप मन उपयुक्त लागत है वो नस्ल के बकरी पालन करके आप मन अपन के पशुला अपन के बकरीला बकरी प्लेग या बकरी के चेचक या गोट पाक से बचावा, बकरीला स्वस्थ रख करके आर्थिक उन्नति और समृद्धि लावा।

अभी आप सुन रहे थे कृषि मंच, जिसमें चर्चा का विषय था बकरियों में होने वाले चेचक की पहचान। इसके साथ कृषि मंच अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा, जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित की जाएंगी। कुछ ही समय के पश्चात आप सुनेंगे रामचरित मानस। गान 6:40 पर, 6:50 पर होगा देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम का वक्त होगा 7:35 पर। कार्यक्रम झरोखा में चर्चा का विषय होगा परिवार और समाज के लिए खराब है शराब। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मादर आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात सुबह 8 बजे एवं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां का वक्त होगा 8:30 पर। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे 11 बजे एवं पुनः 12 बजे। इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 9:55 पर और पुनः 11:55 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10 बजे। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी आप सुनेंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10 बजे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथ ही हमार गोट। प्रायोजक है CF वन विभाग सरगुजा। झलकी आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी का वक्त होगा 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7:30 पर। पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप पुनः 7:55 पर प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 MHz पर। 6:40 हुए हैं। सुनिए रामचरितमानस गान की 107वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिनें सोलहों श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। रामचरित मानस गान अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:50 हुए, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत का कार्यक्रम देशगान।

समूह स्वर में अभी सुन रहे थे आप देशगान। देशभक्ति गीत का कार्यक्रम देशगान अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातन्त्र्य दिवसात् पूर्वमेव आईएसआई इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकिजालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन द्विशताधिकान् सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिक सञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः चतुर्दश राज्याणां विभिन्नेष् स्थलेष् समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य द्वादश दिनांके राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्त सूचनानाम् आदान प्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शहजाद भट्टी जालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मक प्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्य प्रशासनेन चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन चतुर्दशाधिक द्विसहस्रतम वर्षादारभ्य झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् एकादशतः त्रयोदश पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेष् भागेष् अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणाम् एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है।

0: नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गई। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar.
2: आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 6.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लबों पर ठहरे कुछ अल्फाज, फिजाओं में घुलती कोई आवाज और दिल को भा जाए वो गीत है हमारे पास। श्रोताओं, कार्यक्रम है चित्रपट संगीत और गीतों सुरों का सिलसिला चलने वाला है और वक्त है गीत सुनकर गुनगुनाने का। तो सुनिए फिल्म CID का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी शमशाद बेगम ने। मजरूह ने इस गीत को लिखा है, ओपी नैयर का संगीत है। सुनिए फिल्म CID का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम के स्वर में।

0: इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: श्रोताओ, नौजवान फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर के स्वर में साहिर के लिखे इस गीत में संगीत दिया है श्री बर्मन ने।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आज आप सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्मों के गीत, और इसी कड़ी में सुनिए अगला गीत फिल्म मधुमती से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र ने गीत के बोल लिखे हैं, सलिल चौधरी का संगीत है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने

0: मंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गीत, जिसे गाया था आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये संगीत भरा सफर अब यही थमता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरूखा।
1: झरूखा

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम झरोखा में आप सभी श्रोता साथियों को डिनेश्वरी का नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं आप सभी से बातें करने के लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज की सबसे बड़ी चुनौती और समस्या, जिसे आज बहुत से लोग एवं सीधे तौर पर कई परिवार जूझ रहे हैं, और वो है नशा करना। मित्रों, नशा कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन शराब का सेवन मुख्य नशे में से एक है। मित्रों, नशे के कारण व्यक्ति अपनी बहुत सारी चीजें खो देता है। खोता है घर का सुकून, पैसों का संतुलन और रिश्तों का भरोसा। शराब की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी कीमत सिर्फ खरीदने वाला नहीं चुकाता, बल्कि परिवार चुकाता है, बच्चे चुकाते हैं, समाज भी चुकाता है। क्योंकि शराब सभी के चैन, सुकून, मान सम्मान भी छीन लेता है। शराब एक छोटा शब्द है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी है। यह शुरू होती है कहीं फैशन या दिखावे के नाम पर, कहीं दोस्तों की संगत से, तो कहीं परेशानी या तनाव से बचने के बहाने से। और इंसान को कब इसकी लत लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जिस कमाई से घर की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, वो नशे की लत को पूरा करने में चली जाती है। नशा करने के बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, जिससे वो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, लोगों को अपशब्द कहता है, और ये घर परिवार में घरेलू हिंसा का कारण भी बनता है। कभी कभी व्यक्ति नशे में आपराधिक कृत्य भी कर जाते हैं। नशे में गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के कारण बनते हैं या दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, जान भी जा सकती है। मित्रों, शराब पीने वाले व्यक्ति की छवि घर परिवार और समाज में ऐसे कृत्यों के कारण खराब हो जाती है, साथ ही उनका मान सम्मान भी खत्म हो जाता है। उनके साथ साथ उनके परिवार के मान सम्मान पर भी आंच आती है, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, खुशियां भी छीन जाती है। मित्रों, नशे को कभी भी तनाव या समस्या से उबरने का साधन न समझें, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। साथ ही आगे चलकर शराब पीने वाले व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है, जिससे लीवर को नुकसान पहुंचना मुख्य खतरा है। मित्रों, नशे से दूर ही रहे, और अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर इलाज करा सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई समस्या है तो घर परिवार के लोग या मित्रों से चर्चा करें, बात करें, नशे का सहारा न लें। ऐसी संगत से बचें जो आपको नशे के रास्ते ले

कर जाएं। नशे से नहीं, अपनों से रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी नशे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मित्रों, नशे को कहें ना, क्योंकि परिवार और समाज के लिए खराब है शराब।

अब कार्यक्रम झरोखा से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हम

0: हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए नवलदास मानिकपुरी और अनुसुईया मानिकपुरी को।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

नवल दास मानिकपुरी और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही समय के पश्चात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां आप सुनेंगे 8:30 पर। रायपुर केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे, 11 बजे एवं पुनः 12 बजे। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10 बजे। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी आप सुनेंगे 10:30 पर।

आइए जानते हैं शाम को हमारे आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। झलकी आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी रक्तदान से स्वस्थ रहें संतुष्ट भी। साथ ही आप सुनेंगे करियर एडवाइस और चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे जुग जुग जियो अभियान। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से छत्तीसगढ़ी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आप पुनः आनंद ले पाएंगे 8:30 पर और शाम 7 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये थी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए

0: امریکی کانگریس سے سیف گارڈ امریکن ووٹر ایلیجیبلٹی یعنی سیو امریکہ ادھینیم پارت کرنے کو کہا. یہ پرستاوت ودھیک سنگھیے چناؤ میں متدان کے لیے اور ادھک سخت نیم لاگو کرنے کی مانگ کرتا ہے. بھارت آج نئی دلی میں برکس دیشوں کے پریاورن منتریوں کی 12ویں بیٹھک کی میزبانی کرے گا. پریاورن ون اور جلوایو پریورتن منترالے نے بتایا ہے کہ یہ بیٹھک مہتوپورن وچار ومرش سرو سمتی تک پہنچنے اور پریاورنیہ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کا منچ اپلبدھ کرائے گی. ایک رپورٹ.
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे. यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता नवाचार सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा. यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी. अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है. इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है. नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली.
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है. कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे. जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे. मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी. इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं. जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया. उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की. उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है. बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी. हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है. राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है.
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है. इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है. रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला.
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है. ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था. उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी. तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है. केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात

0: शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंजम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंजम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला पेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिन्दुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC

8:30 हुए हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू के तरफ ले। श्रोता साथी हो, आज मोर भुइया में क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, और एक क्रम में जैसा कि आप मन जानता हो कि हमर जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं जीवन छत्तीसगढ़ी में रचना करत हैं, ऐसे साहित्यकार मल्ला हमन आमंत्रित करथन, और ओमन के जो साहित्यिक यात्रा है और छत्तीसगढ़ी भाखा ला बगराए के जो उद्यम करते हैं वो सब ला हमन जाने के प्रयास करथन। तो यही कड़ी में आज हमन आमंत्रित करे हन महंत पोखनदास मानिकपुरी जिला, आप ग्राम बिरकोनी जिला महासमुंद के रहो यावा। पोखनदास जी, आपके स्वागत करत हन आज के कार्यक्रम में, और स्वागत करते हुए आपसे आपके बारे में जानना चाहत हन। आपके पैदाइश कहाँ होइस, कब होइस, और कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई होइस आपके?
1: मोर नाम पोखनदास मानिकपुरी, मोर पिताजी के नाम जगेश्वरदास मानिकपुरी, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। मोर माता का नाम श्रीमती देवाबाई मानिकपुरी, तो मोर पालन पोषण मोर नाना बिसाहूदास मानिकपुरी कोटवार रहिन है, ओकर छत्र छाया में होई से उही मोला पढ़ाई ने लिखाई ने। मोर गावे में हाँ आठवीं तक के पढ़ाई करे, ओकर बाद फिर हमन हाई स्कूल पढ़े भर तो गाँव जावन, वो याद नहीं भूलन, रेंगत जावन और रेंगत आवन।
0: कत का दूर रहीस?
1: वो 10 किलोमीटर है,
0: सुबह जावा और शाम तक वापस भी आवा।
1: हाँ, और हाँ। कभी एक्स्ट्रा क्लास यदि सर मन ले लें तब हो औ जाते और फिर आते हैं परीक्षा उरीक्षक समय एक्स्ट्रा क्लास ले सर मन। तो ऐसे मोर पढ़ाई है तो उन्हा 11वीं मैट्रिक तक के होइस, और ओकर बाद आगे पढ़े की इच्छा तो रही से, लेकिन आरंग में भर्ती हो और चूंकि फीस वीस के लिए बातचीत करे माफी हो ही गई, तो एक जन वहाँ पार्षद रही से स्कूल के सदस्य रहीन है, वो मन कहा तो फिकर जन कर फीस ला माफ हो जे है, लेकिन कहा भर और 3 महीना 4 महीना जब फीस ला मांगे स्कूल में तो एक जन लेकर आए छटेरा के, वो मोल बार बार कहते अतेक गरीब हस तो पढ़थस काबर जी कॉलेज में, ओकर बात ला ज्यादा ध्यान तो नहीं दो लेकिन ओकर बात हा लगे। और लगभग में हा 2 महीना 3 महीना तक के गेव, और कुछ हाइड्रोसिल के बोल शिकायत हो गई से, डॉक्टर कहे साइकिल वाइकिल झन चलाए कर, और यही ये में मोर पढ़ाई है तन छूट गए। सर मन मोल बहुत प्रेम करे, और जब छुट्टी से ना तो अब काय करूँ, घर में एक ही झन यहू लड़का है कोटवारी कर ही खेती किसानी कर ही, घरों के मन भी उतने ध्यान नहीं देन, और मोर पढ़ाई है तन उहे तक के रुक गए। और फिर मैं हाँ कोटवारी करे हूँ 5 साल तक के नाना के ओकर काम ल करो मैं हाँ।
0: अच्छा,
1: और खेती करो, लेकिन वो वक्त पैसा का बड़ा कमी रहा है, तो यही बीच में कपड़ा दुकान में महासमुंद में काम करे गए, 30 रुपया महीना, और कपड़ा दुकान में काम नहीं करावे घरों में करावे और बाहर भी भेजे, मैं सोचे हूँ अतका काम यदि घर में करते हो तो फिर तो बातें अलग रहती, और मैं वहाँ 21 दिन काम करे हूँ, और ओकर बाद में मैं हाँ वहाँ ले राम राम कही दे, और घर में आके एक झन खेत जाओ, और सवेरे जाते 10-11 बजे आ जाते हूँ, अतका सुंदर खेत खार मोर बढ़िया बनीस, लेकिन का कर में नजर लग गए आजू बाजू कुछ पोठला किसान मन के, ओ मन हा जेन पानी भाटा के तरिया में जावे वो तरिया में पानी नहीं जानदन की के सब पानी मोर खेत डहर।
0: ये तो बहुत चर्चा लंबा हो जाए हमन के, हमला तो, आपके जो साहित्यिक यात्रा है एकर बारे में चर्चा करवो आपसे। आप कोटवारी करा, फिर हाँ, दुकान से जुड़ा, हाँ, खेती बाड़ी हाँ, करा हाँ, है ना, हाँ, फिर आप गुरुजी भी बने रहा,
1: हाँ,
0: तो कैसे गुरुजी बना आप?
1: यही कुछ मन में ठेस पहुंचीस और फिर मैं चुप बैठे रहा, तो कोई आदमी सलाह दे नहीं आते, पढ़े लिखे आदमी हस, नौकरी काबर नहीं खोजस। और फिर मैं ऐसे तन मन से मैं जुड़ गया हूँ, मोले याद है वो दिन, हाँ, मोर एक जन के नाम से शिक्षकी आर्डर निकलीस और भीम खोज के पास जोरतरी गांव है, और मैं बिना देखे एक ठन संदूक में सामान धरे हो चले गए, वहां तो आदमी राहत हो ही, वहां गए और पूरा 5 साल तक के वहां वो कमार बिंझवार सौरा गोड़ इकरे बस्ती है, और वो बांध में वो गांव की जमीन डूब गिरी से, वो गांव में बहुत गरीबी, और वहां स्कूल भी नहीं रही से, गांव के कोई आदमी के परछम पढ़ान। मैं प्रथम बार वहां 5वीं कक्षा लड़का मल निकाले हूं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो ऐसे करके लड़का मन आपसे जुड़त गिन, और वहां के बच्चा मन शिक्षित होत गेन, हाँ, है ना। अच्छा, वो मल आप शिक्षित करे, और चूंकि दूर दराज के गांव है, लड़का मल रोज स्कूल में उपस्थिति दिलाना भी बड़ा संकट वाला काम रहे।
1: बांध में पानी में छेका जाए वो बाजू गांव है,
0: हाँ,
1: तो बस 1-2 महीने पहली आतीन,
0: हाँ,
1: और ओकर बाद छेका जतीस, ओकर बाद जब दसराव होतीस तेकर बाद आतीस। मैं मोर मन में पढ़ाई की धुन रहा है
0: जी,
1: कोई भी जातीस ऐसा तक बिरल कोई नहीं पढ़ा मैं जी,
0: हाँ,
1: लेकिन मोर मन में धुन रहा है ओ मल्ला मोर दिलचस्पी के साथ ओ मल्ला पढ़ाओ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाओ मोर घर में पढ़ाओ ओ मल्ला खवा पिया पढ़ाओ,
0: लेकिन पढ़ात रहा। मैं आपसे ये पूछत रहे कि एक तो दूरदराज के गांव के लड़का आप ओमल स्कूल से जोड़े रखना, शिक्षित करना बहुत बड़ा काम है यहाँ, तो कुछ ऐसा आप कुछ नया खोज कर रहे कि हमला गीत संगीत के माध्यम से, छोटे छोटे कविता के माध्यम से पढ़ाई से जोड़ना है?
1: वो गांव में मैं रामायण मंडली खोले हूँ, और वही लड़का मन रामायण में बैठा है, और गांव के कुछ आदमी मन भी बैठे हैं, और वो पहली बार वहाँ रामायण के हैं। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में ग्वालियर चले गए हूँ,
0: अच्छा,
1: 2 साल वहाँ ट्रेनिंग करे हूँ, और वहाँ से जब आए हूँ तो मोर अपॉइंटमेंट हुई लुकुपाली कोमा खान के एक ठन पारा लुकुपाली का थे, वो गए तो वो स्कूल नहीं। अब मोर मन में पढ़ाई के शौक रहा है, मैं कह मोला जगह दो भाई, पहली मिडिल स्कूल में संलग्न चले सवेरे स्कूल, मैं एक ही जन हूं और सवेरे स्कूल में काय करूं, तो सराय ने मैं हाँ वहां एक आध साल पढ़ा है, उकर बाद फिर स्कूल खुलिस स्कूल बनीस, और वहां माने हमन 6-7 जन टीचर हो गए, और वो गांव में वो लुकु पालिल नहीं जानत रही नहीं, लेकिन लुकुच पालिल जानी ना वो मेरे
0: जी जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो लिखे के कविता लिखे के जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, वो भी छत्तीसगढ़ ही में
1: रामायण में बैठान,
0: हाँ,
1: तो कुछ थोड़ा बहुत वो में तर्ज वर्ज बनाए शौक मोल पहली चले रही से पढ़त रहन तब के, फिर नौकरी के बाद भी काबर की वही मोर जनसंपर्क के पोठ माध्यम बनीस रामायणे है,
0: अच्छा,
1: और फिर कुछ कविता लिखो कुछ कोनो कोनो देखाओ, लेकिन वो मन गाइड ठीक से नहीं करीन, ठीक से गाइड नहीं करीन, मोर मन एकदम ये होगी से। उकर बाद में एक बार हमर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रही से, अब वो देखिस अब यहाँ मैं क्या मदद कर सको, वो निराश कर दीस, और आखिर में मैं ए लाइन से बिल्कुल हट गए हूँ। फिर रिटायर हुए, रिटायर होए के बाद जब जानी तो कुछ आदमी मन महासुन में काव्यांश कवि

0: मन के संस्था है, कला संस्था, वहाँ कविता वगैरह हर प्रकार के कला के,
1: जी
0: वहाँ मोर लैका वहाँ मोला संपर्क करेस। और वहाँ में जब मोर कविता वगैरह में हाँ लिखत जाऊँ, वहाँ जो प्रधान है वे वो हा हेडिंग हेडिंग मन में मैं कविता लिखूँ
1: जी
0: हर रहे में, तो वही संकलित टाइप के हो गए, हर हेडिंग वह से दिस और
1: अच्छा
0: संकलित हो गए।
1: हाँ
0: और पहली जो लिखे रहे वो तो उदासीनता के नाव लेके फेंका आ गए, कहाँ गए, लेकिन ए
1: कभी
0: मन
1: खोजे
0: लगे
1: के प्रयास नहीं करे कि जो पुरानी कविता मैं लिखत रहे वो कैसा रही
0: वो
1: से। हाँ
0: निराश हो गए रहे हो, मैं हाँ बिल्कुल एडहार से हटी गए रहे हो।
1: अच्छा
0: लेकिन ए में जब जुड़े ना काव्यांश संस्था महाशून ने मोले एक ठन मंच मिलीस, एक
1: हाँ
0: ठन सहयोग मिलीस, तो ए रचना हमोर प्रकाशित में आईस। और एकर लिए वो द्विवेदी जी उहू मन हा इंटरनेट से जुड़ के कुछ मतलब बातचीत करें और वो और रुचि जगा दीस। हाँ और फिर ये लड़का है मोर लड़का ललित मानिकपुरी पत्रकार है, अब ओहू हर थोच मतलब संकलन करे में जुड़े में सहयोग करीन
1: जी
0: है।
1: अच्छा पोखन जी
0: हाँ जी
1: आप शिक्षा जगत ले जब सेवानिवृत्त होया ओका बाद लिखना शुरू करे आप कविता है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: और आप बहुत समय गांव में बिताया है,
0: हाँ
1: गांव में रह रहे वहां के माटी से माया हो जाते, तो वो माटी ला सुरता करके कुछ दो चार लाइन कविता हमारे साथी मन ला सुना देवा।
0: मोरी गांव के माटी श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं, सांस सांस तोर करो वंदना, सुघरे आशीष पाऊं, जन्म भूमि तोर दया मयाला और कभू नहीं भुलाओ, जब जब जन्म धरो धरती में तोर को रामे आओ, करो वंदना जम्मो जन के जे मन गांव बसाए है, लैका मन फल खाही कही के सुघर पेड़ लगाए है, रास्ता सुघर ताल तलैया सुघर खेती बारी है, और सुघर अमरैया मोहारी सुघर सब नर नारी है, प्यार जगा दे सबके भीतर और मन में निर्मल भक्ति दे, फलै फूलै सुख शांति बढ़े सुघर यकल यो शक्ति दे।
1: जी ऐसे करके आप गांव के माटी ला सुरता करत रहे है ना, और वो एक रचना के रूप में आ गए सामने, एक कविता ला अभी आप सुनाए हमारे श्रोता साथी मन, एकर पहले आप कहीं सुनाए रहा आप।
0: हाँ कवि
1: हाँ
0: सम्मेलन मन में कोई
1: अच्छा
0: जगह
1: जी जी जी
0: जरूरत पड़ते तो सुनाए हों,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन अब
1: हाँ
0: सियानापन के नॉलेज ज्यादा
1: हाँ
0: आ जाए मर्चन हो जाते, मन तो होते कोई जगह होते तो जाओ कही के,
1: जी जी जी
0: लेकिन लाचारी बस जाए
1: हाँ
0: नहीं सको।
1: जी लेकिन रचना आप कविता अभी भी लिखा था वह है
0: हाँ
1: ना,
0: लिखता हूँ मैं
1: तो ये जो
0: अभी।
1: छत्तीसगढ़ी में आप जो रचना करे के सोचा हो आप, वो कैसे मन में इसकी मौला हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना है।
0: भाव जब जगते ना
1: हाँ
0: तो छत्तीसगढ़ी मोर मातृभाषा है,
1: जी
0: छत्तीसगढ़ी में ही ज्यादा कविता बन जाते हैं, और हिंदी चूंकि अब हम पढ़े लिखे हैं तो हिंदी में भी
1: जी
0: स्वाभाविक रूप से बन जाते, तो जिन समय में हिंदी भाव आते हिंदी में कविता बन जाते, और छत्तीसगढ़ी के तो फिर ज्यादा करके आते।
1: जी
0: और मैं हाँ मोर मन में हमर गांव
1: जी
0: के जौन देखता हूँ मैं हाँ, तो मोर भारतीय देश की याद आते है। हाँ मोर भारतीय देश ये है, हमन जो अलग अलग छोटे छोटे देखथन ये हमर मन के दृष्टिकोण के थोकिन त्रुटि है, हम अलग पूरा भारत देश लग गावे में देखना है, कौन बताए सखी कति मेर भारत है कि के
1: जहां हाथ रख दिया वही भारत
0: जो
1: है।
0: ही भारत है नहीं। तो एक किस्म के मोर कविता मन में देश प्रेम के बात है, गांव के प्रेम के बात है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रेम के बात है, और सबसे बड़े बात है कि कैसे मोर देश है तो एक हो जाए, मोर गांव एक हो जाए, काबर एकताच में ताक

0: है, हमन जो ना अलग अलग अलग अलग सोच विचार रखे हैं, ये हा बनावटी है। चूंकि भगवान भी एक ठन है, ये सृष्टि के रचना कार्य के ठन है, अलग अलग बांट के हम लोग कमजोर नहीं होना चाहिए। तो मोर रचना मन में अक्सर करके यही बात है कि जेमे सबो भगवान मन आजत हैं, एक एच में आजत हैं, मोर रचना में पूरा गांव मन देश में आजत है, हर नार नारी में भगवान दिखते, ये बात हो जाते है। तो जेकर मन में ये बात आ गए तो ओकर भेदभाव खत्म हो जाते है और ओकर पास इंसानियत जागते। अब भेदभाव रही तब तक इंसानियत की कमी हो जाते है और हमर छल कपट झूठ लबारी अपन स्वार्थ वाला बात है तो ये भगवान से दुरिहायक बात है, ये देश से दुरिहायक बात है। हमला भगवान से प्रेम करना है, देश से प्रेम करना है तो अपन सच्चा ईमानदारी के साथ जौन भी काम हम करत हन तिहा जिम्मेदारी के साथ में हमला हर आदमी ला अपन जिम्मेदारी निभाना है, तब तो हमार आजादी सुरक्षित रह सकी और हमार ताकत सुरक्षित रह सकी। जिम्मेदारी के वहन हर आदमी ला वहन करना है और हमार सरकार जौन विकसित भारत के जौन खाका खींचे है तो एमे हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सहयोग करे, हर आदमी बदले तब देश बदल जाए।
1: हमार छत्तीसगढ़ में चलन में है मितान बदना, है ना, तो हमार मितान सही रही, सही रास्ता दिखा ही और हर कोई एक दूसरे ला मितान मान ही तो हमार देश तो विकसित बन ही। तो आप मितान के बारे में भी कुछ रचना करें हवा का।
0: हाँ,
1: तो वो रचना का है मितान के, वो हमार श्रोता मल्ला सुना देवा।
0: आदमी सामाजिक प्राणी है,
1: हाँ,
0: वो अकेला तो नहीं रह सके
1: जी,
0: तो मितान के बहुत जरूरत है। तो एमे मोर रचना है, भारी है महिमा मितान के भैया मोर, भारी है महिमा मितान के, गुण लगावत हो मितान के, दीदी मोर भारी है महिमा मितान के, मोर खुशी में खुश हो जाते और मोर दुख में दुखारी, और अपन दुखला छोटे मानते मोर दुखला बड़ भारी, और संग मोर दे थे सीना तान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान के, गलती होते बरज देते सुंदर रास्ता चलाते, गुणला मोर उजागर करते दोसला मोर दुराते, बड़ प्रतिथिया मदद करैया पक्का अपने जान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान के, विपत के बेरा में मितान के प्रेम सौ गुना बाढ़ जथे, औ पाँव में काटा गड़ जाते मोर तब दांत में चाब के निकाल देते, रखे रथे सुरता मोरे आन बान शान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान के, दीदी मोर भारी है महिमा मितान के।
1: जी, बहुत बढ़िया रचना है ये आपके। और मितान के जो महिमा है, मितान के जो सहयोग मिलते, अपन जो सगा जो होते हैं रिश्तेदार ओकर से भी बढ़ के होते, ये जो मितान है ये, और हमारे छत्तीसगढ़ में कर चलन बहुत है।
0: हमारे छत्तीसगढ़ में
1: हाँ,
0: गंगा जल,
1: हाँ,
0: गजा मूंग, महाप्रसाद,
1: हाँ,
0: तुलसी दल,
1: गिया बदना,
0: कई ठन ऐसे जमारा, ऐसे कई ठन है जेकर से हमर छत्तीसगढ़ के आदमी रिश्तेदार का सम एक दूसर से गुथाए रथन, और हमला एकर बड़ा गर्व है कि हम हमर गांव में हर आदमी संग परिवार बरोबर रथन, चाहे वो कोनो जात के होए, काका मामा भैया चाचा, ऐसे हमन सब
1: मिल कछु न कछु रिश्तेदारी हो जाते,
0: और यही चीज हमर देश ल मजबूत बनाते, और हर गांव में हमर छत्तीसगढ़ के तिये रिवाज है, कितना भोलापन छल कपट तो जाने नहीं, आराम तो हराम है ओकर बर, ऐसा हमर छत्तीसगढ़िया आदमी, और वास्तविक में कहे गए है छत्तीसगढ़िया सबले बड़ी,
1: सबले बड़ी,
0: बिल्कुल सही बात गे है।

0: किन काकरो भुलावम नहीं आना चाहिए। अपन जौन संस्कृति है, अपन जौन सीताराम वाला संस्कृति है, अपन जौन माया दुलार प्रेम दया करुणा सहायता एक दूसरे लकर की ये संस्कृति है, ये हमार मन के लिए बहुत गौरव के बात है और हमार एकर से हमला बड़ा खुशी लागते।
1: आप इतना बढ़िया चर्चा करा था, मुझे लगता है आपके जो रचना है कविता जो आप लिखता ये मन में भी कहीं ना कहीं ये मन आ जात हुई, क्या कि आपके विचार में ये सब चलत है ना,
0: जो उन्हें भीतर थे तो उन्हें निकलते
1: निकलते हाँ।
0: तो मोर मन में बिल्कुल ये है हाँ। कि भगवान एक ठन है
1: हाँ।
0: और हमला सबसे पहली
1: जी
0: हमर धर्म ला जानना चाहिए
1: जी।
0: मानव धर्म हमारे
1: हाँ।
0: इंसान में दया होना चाहिए, क्षमा
1: हाँ।
0: होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तभी हमर देश एक हो ही और तभी हमर देश मजबूत हो ही और तब हमर देश विकसित भारत बनी विश्व गुरु के पद में पहुंची जैसे पहली पहुंचे रही से।
1: जी जी और एकर खातिर साहित्यकार मन के बहुत बड़ा योगदान होते समाज में है ना। आप एक साहित्यकार हो के नाते और छत्तीसगढ़ी भाषा में आपके एक बहुत अच्छा अधिकार है लिखे के, हिंदी में भी आप लिखता हो, तो ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है हमार नई पीढ़ी हर हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश ऐसे करके तो खिचड़ी जैसे हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचा के रखना है, छत्तीसगढ़ी बोली ला, छत्तीसगढ़ी में जो हमन के जो मुहावरा होते है ना अलग अलग तरह के ओला बचा के रखना है, एकर खातिर कुछ प्रयास आप मन के तरफ से होते।
0: हमर छत्तीसगढ़े में ही कई ठन बोली है,
1: हाना के भी
0: बस्तर
1: चर्चा
0: में कई ठन बोली है,
1: जी
0: अलग अलग एरिया में जाता ना तो ही छत्तीसगढ़ी ही कई प्रकार के अलग
1: जी
0: अलग
1: जी
0: स्थान में बन जाते
1: हाँ।
0: और बड़ा अच्छा लागते, मीठे गुरतुर है, भावना के साथ जुड़े हुए है और हमर देश के जतका भी भाषा है और ये भाषा मन हा बाधक नो है, ये भाषा मन हमर मन के ना बढ़ाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। क्षेत्रीय भाषा ये मन हमर माता बरोबर है, जैसे महतारी दूध हम मतलब बढ़ाते तो इसने और हमर जन भाषा है में ये भाषा संस्कृत है और भी आज अंग्रेजी के प्रति जन प्रेम है तो हमला हमर भाषा मतलब भुला के अंग्रेजी डहर एकदम एक मुस्त नहीं हो जाना चाहिए, अंग्रेजी आगे बढ़े बर गलो जरूरी है लेकिन हमर जो भाषा है ये मन तो महतारी दूध बराबर है और सबो भाषा मन कोई बाधक नो है और हमला एक भाव से जुड़ना चाहिए। हमर राष्ट्रभाषा जौन हिंदी है एकर तो विरोध किसी मात्रा में नहीं करना चाहिए, भारत देश ले मजबूत बनाना है तो ये जौन हमर जौन एकता है एकर संबंध में राजनीति नहीं होना चाहिए, दूसर हाँ। के सहयोग रहना चाहिए।
1: एक चीज बतावा पोखन जी कि हमर जो नई पीढ़ी के लड़का हैं ओमन खातिर आप का करत है कि ओमन अपन जो महतारी भाषा है ओकर से जुड़े रहें, ठीक है हिंदी सीखे अंग्रेजी सीखे और भी जो भाषा है वाला भी सीखे, लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा है एला तो जाने एमा कोई संकोच झन करे कर खातिर का करना चाहिए।
0: बहुत विचार की बात यह है जैसे मोला आज मंच मिली से तो आज मैं हे दे एकर पहले से यदि मोला को सहयोगी मंच मिले रहतीस तो आज और कुछ पहले से मैं प्रोग्रेस में रहते हूँ। आज लड़का मल्ला नव सीखिया मल्ला एक नया मंच देख जरूरत है और वो मल्ला प्रोत्साहन देख जरूरत है और जतका हमर जौन कवि है का यदि उकर मन के रचना केवल लाइब्रेरी तक के नहीं रहना चाहिए, उकरो मन के जे मल्ला हमन भारत रत्न और बड़े बड़े पुरस्कार दे हन वो रचना मन केवल डिग्री स्कूल तक के नहीं रहना चाहिए, यदि समाज ल उत्थान करना है तो हमर जो साहित्यकार हैं कहानीकार हैं कविताकार हैं नाटककार ये सब हमर समाज में आना चाहिए और नया आदमी मतलब ही ना एक मंच मिलना चाहिए, मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए तब हमर जौन छत्तीसगढ़ी भाषा है और मातृभाषा है ये मन फल ही फूल ही और तब हमर देश है तो उन्हें मजबूत बनी।
1: एक खातिर बेरा के पहचान करना जरूरी है, बेरा के महत्व ला समझना है, बेरा के पहचान करना है,
0: समय कीमती है,
1: है ना समय हाँ। बहुत कीमती है, तो मैं कहता हूँ बेरा के चिन्हारी करते हुए एक और गीत आपके
0: हाँ।
1: सुन लेते हैं हमारे श्रोता मल्ला सुना देवा।

0: समय और चेतना ये दोनों के बड़ा घनिष्ठ संबंध है और हमला ना जागरूक रहना जरूरी है और हमला समय के पहचान करना जरूरी है, सचेत होना जरूरी है और जतका हमर संत महात्मा है तेमन जागरूकते करे हैं। हमला स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, परमात्मा परमार्थ रूप है, परमात्मा है तो सब तो ये बेरा के हमलना सजग होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए अपन देश के प्रति, अपन भगवान के प्रति और अपन जीवन के प्रति। इंसान ना तो जरूर समय की चिन्हारी होना चाहिए। मोर रचना है, बेरा के कर ले चिन्हारी संगवारी मोर, पीछू फेर पछताए ल परही, भूखते के बेरा दुख भारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। सुघर बेरा मिले है और जैसे सुघर बिहनिया, मानुष चोला सुघर हावे, सुघर हावे दुनिया, मिले है सुघर तोला पारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। शिक्षा के अंजोर में जीवन ल सुधार ले, और सूते झर्रा जाग जा बने तय विचार ले, बीते बेरा लहूट के नहीं आही संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। जैसन बीजा बोवत हावस तैसने फल ल पाबे, और दुख भोगे के बेरा काबर पर ल दोष लगावे। महाभारत में कौरव दल के हो गए उजारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी संगवारी, बेरा के कर ले चिन्हारी।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना आप सुनाया, बेरा के चिन्हारी करे के आप हमार श्रोता मल्ला एक प्रोत्साहित करे हवा। और ऐसे ही आप लगातार अपन लेखनी ले चलावत रहा, और हमार जो नई पीढ़ी है ओमल्ला भी आपके मार्गदर्शन मिलत रहे। आज आप स्टूडियो में आया और हमन से बातचीत करा, श्रोता मन से बातचीत करा, और आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, आपकी जीवन यात्रा है, एकर बारे में आपके बारे में जाने पर मिली से आप स्टूडियो में आया, कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आपला। श्रोता साथी हो, अभी आप मन हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में महंत पोखन दास मानिकपुरी जी से हमर बातचीत सुनत रहो। आप ग्राम बीरकोनी महासमुंद के रहवैया और एक लंबा समय आप शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बिताया है, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी

सलाम नमस्ते या था फिल्म का नाम। शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता

0: जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, जब भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक अनुवादक, एक लेखक। कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं। तो फिर कहां से शुरू की जाए।

0: क्या 1963 से शुरू की जाए, जहां बंदिनी फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लिखा मेरा गोरा अंग ले ले।
1: कुछ

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे। या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे। या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

इस गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है, और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन नहीं रहा हो।

संपूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर। राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

0: जब बात गुलजार साहब के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने पर ये कहाँ छिपे रह गए थे।
1: जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है और दोस्तों में...

पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार। ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ इरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब को लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए। उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया वो बाद में, पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाएं। हवा

0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: फिल्म दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972। आप समझ गए कि बात जीतेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की हो रही है।

भाई ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और राहुल देव बर्मन। गुलजार और आरडी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।

राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसी कहानी जो कम सुनी गई हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में ये फिल्म आई थी।

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में।

फिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आर डी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

ऐसी जादुई रही है गुलजार की पूरी सिने यात्रा। इस सिने यात्रा में कभी गोलमाल भी हुआ। जी हाँ, फिल्म गोलमाल, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो धमाल किया कि इस गोलमाल को हम हमेशा याद रखते हैं। देखिए ना, इस कार्यक्रम का वक्त भी किस तरह से बीता चला जा रहा है कि किशोर कुमार साहब समझा रहे हैं।

0: ने सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है।
1: साथी, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में डेयरी नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर देगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की

0: चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगिया में जशपुर वनमंडल के जन जागरूकता अभियान पर आधारित पुस्तक गजरथ यात्रा भाग 2 का विमोचन किया। यह पुस्तक मानव हाथी द्वंद्व को कम करने, हाथियों के संरक्षण और प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों पर लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने जशपुर को वन संपदा और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां मानव तथा वन्य जीवों के बीच सुरक्षित सह अस्तित्व सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के साथ वन और वन्य जीवों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानव हाथी द्वंद प्रबंधन, जन सुरक्षा और हाथियों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। रायपुर में कल मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, महिला दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी बढ़ाने और दूध संग्रहण तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग में डेयरी विकास को लेकर विशेष जोर दिया गया। विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में अचानकमार टाइगर रिजर्व एटीआर के सिहावल सागर एलिफेंट कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम में हाथियों की देखभाल, सुरक्षा और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महावतों और हाथी मित्र दल के सदस्यों को सम्मानित किया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। 4 दिवसीय इस स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची करेंगे। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक अटल श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर करीब 1,15,00,000 रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर पकड़ा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। पुलिस आरोपियों से जब्त मोबाइल की जांच कर रही है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि एक अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से राज्य में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि 19 अगस्त के बाद से बारिश में कमी आने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कोरबा में 176.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। बांगो बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दर्री बैराज के 4 गेट खोलकर 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे 35 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आज राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में व्यापक मॉक ड्रिल होगी। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज में राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में डेयरी नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर देगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1,25,00,000 रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे ही डीजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका का सबसे बड़ा आधार कृषि है। धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है। कालांतर से छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। बीते कुछ सालों से यहाँ के किसान मिश्रित खेती करने लगे हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता और किसानों की संपन्नता में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इधर कुछ सालों से किसानों का रुझान उद्यानिकी की तरफ भी बढ़ा है। अनुकूल मौसम के कारण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में फलों की खेती बढ़ी है, जिसमें प्रमुख है जशपुर की रस भरी नाशपाती। उत्तर भारत के ठंडे और पठारी इलाकों से नाशपाती अब उतर आई है मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। जशपुर, मनोरा, बगीचा और पेंड्रापाट के ठंडे और पठारी इलाके नाशपाती की खेती के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ का ठंडा, खुशनुमा और ढलान वाला पठारी मौसम नाशपाती के पौधों के लिए बेहद अनुकूल है। जशपुर की रसीली नाशपाती छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाजारों में भी भेजी जाती है। नाशपाती की अच्छी मांग होने के कारण किसान प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख तक शुद्ध आय कमा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग और नाबार्ड के सहयोग से यहाँ के किसानों ने पारंपरिक फसलों की बजाय इस लाभप्रद बागवानी को अपनाया है।
1: मैं करण सोनकर हूँ। मैं प्रॉपर जसपुर डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हूँ एज ए सहायक संचालक उद्यान। मैं यहाँ लगभग 1 साल से पदस्थ हूँ और नाशपाती क्षेत्र विस्तार योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित है, जिसमें नाशपाती का पिछले 10 साल से लगभग 805 हेक्टेयर में यहाँ पर क्षेत्र विस्तार हुआ है, जिससे कि 1583 टन का लगभग साल में उत्पादन होता है। इसमें किसान को यूनिट कॉस्ट 1,25,000 पर हेक्टेयर में 40% का अनुदान, 30,000 का अनुदान कृषकों को मिलता है और एक हेक्टेयर में या एक एकड़ में अपन बात करें तो 80 पौधे लगते हैं। ये 80 पौधे से एक पौधे से 5 से 6 साल में 25 से 30 किलो का फ्रूट प्राप्त हो जाता है हमको जून जुलाई में, और एक एकड़ की बात करें तो 2 टन के आसपास हमको उत्पादन मिल जाता है। ऐसी अगर 9 से 10 साल का प्लांट हो गया, उसमें से 50 से 60 किलो

फील्ड मिलती है जिससे कि अपने को 8 से 10 टन एकड़ पीछे आराम से मिल जाता है। उस 8 से 10 टन से मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 रुपए किलो भी लेते हैं तो एक एकड़ पीछे किसानों को कम से कम 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.25 लाख, 1 से 1.5 लाख का इनकम होता है। अब प्रेजेंट में भी किसानों को 1 से 1.5 लाख का इनकम हो रहा है। वैरायटी की बात करें तो नॉर्मली जसपुर डिस्ट्रिक्ट में पत्थर नट की वैरायटी लगाई जा रही है। इस साल एनएचएम योजना से, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से अच्छे वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने हरियाणा से पंजाब ब्यूटी और पंजाब गोल्ड के एवं पंजाब नट के 3000 पौधे वहां से लाए हैं, जो कि 30 हेक्टेयर में किसानों को इस साल हम लोगों ने लगवाया है, जिससे कि इन वैरायटी में अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। जो यहाँ का वैरायटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ तो उसका यूज होता ही है। इसके अलावा हमारे आसपास के 3 राज्य जैसे उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए और बिहार हो गए, यहाँ का जो नाशपाती है वो इन राज्यों में भी जाता है और हमारे राज्य के मेन संभाग है अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, यहाँ भी यहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारा पियर यहाँ भी जाता है और इससे हमारे किसानों को अच्छी इनकम मिल रही है। फ्यूचर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो वैरायटी निकल रहा है वो अच्छा तो है ही, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है जिसमें जिला प्रशासन प्रयासरत है। साथ ही साथ जो नॉर्मली इसका प्रोडक्शन जून जुलाई में होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे जुलाई का समय आता है, बरसात हैवी रेन्स होने लगती है, उस समय उसके मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके लिए जिला प्रशासन से जसपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो कोल्ड चेन के रूप में काम करेगा, यहाँ जो मैक्सिमम इल्ड आ रही है चाहे वो नाशपाती के साथ साथ अदर फ्रूट क्रॉप भी है, उसको वैल्यू एडिशन में जोड़ने के लिए जिला प्रशासन अभी प्रयासरत है और फ्यूचर में इस साल या अगले साल यह बनने का DPR बन चुका है और आगे प्रोसेस में है। तो मैं सभी किसान भाइयों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन करें और अच्छे से अच्छा उत्पादन करते हुए अपने इनकम में लाभ अर्जित करें। इसमें 1 हेक्टेयर में 1,25,000 का यूनिट कॉस्ट है, उसमें से एक किसान को 30,000 का अनुदान मिलता है। उस 30,000 में पौधे की राशि 20,000 के आसपास आती है और 10,000 जो बचता है उसमें इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और गड्ढा खुदाई ये सब चीज के लिए, क्या वो फेंसिंग करना चाहे वो सब चीज वो कर सकता है सोलर वगैरह लगा के। नॉर्मली नाशपाती को एक ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, है ना, ठंडा क्लाइमेट प्लस ऐसा सॉइल जहाँ पर थोड़ा सा मतलब पानी का ड्रेनेज अच्छे से होना चाहिए, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 3,500 से अधिक किसान लगभग 3,500 हेक्टेयर में नाशपाती उगा रहे हैं, जिससे हर साल लगभग 1,75,000 क्विंटल उत्पादन होता है और किसानों को प्रति एकड़ अच्छा मुनाफा होता है। नाशपाती के पौधे 3 से 4 साल के भीतर ही फल देना शुरू कर देते हैं। इनमें फरवरी में फूल आते हैं और जून के अंत तक फसल पककर तैयार हो जाती है। जशपुर में मुख्य रूप से हरी नाशपाती और इसकी धब्बेदार किस्में

0: उगाई जाती हैं। नाशपाती के एक पेड़ से भारी मात्रा में फल मिलते हैं। इस रस भरी नाशपाती ने जशपुर जिले को एक नई पहचान दी है।
1: मैं सामवेल बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से मनोरा ब्लॉक से हूँ। मेरा गांव है धसमा। नाशपाती खेती से मैं जुड़ा हुआ हूँ और नाशपाती से सालाना हम लोग को बहुत ही आमदनी मिल रहा है। हर साल हम लोग नाशपाती की खेती को अच्छी फसल निकाल रहे हैं और मुनाफा बहुत मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स B1 आधार कार्ड पासबुक जमा करना पड़ता है, नक्शा खसरा से जमा करने से मिल जाता है वहाँ से पौधा। और पौधा मिलने के बाद अपने से लगाते हैं उसको। गर्मी सीजन में पानी देना पड़ता है और कीड़े मकोड़े ना चढ़ने के लिए उसमें चूना पोतना पड़ता है और साथ ही उसको फरवरी माह में कटिंग करना पड़ता है ताकि उसका फसल अच्छे से, कटिंग करने से फसल फल उसका थोड़ा बड़ा होता है। हम लोग तो अभी जो बाहर से कोई भी आता है वो लोग थोक में ले जाते हैं, उड़ीसा वाले आते हैं ज्यादा। एक साल में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है आमदनी। इसमें पहले जैसे जटंगी वगैरह बोते थे तो 14-15 हजार-20 हजार का मुनाफा होता था, उस जगह में भी लगा दिए हैं तो निकल जाते हैं। हाँ, शासन को बहुत धन्यवाद, इसी तरह और भी कृषकों को उत्साहित करें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

0: जशपुर की नाशपाती स्वाद, गुणवत्ता और आकर्षक आकार के कारण देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से पसंद की जाती है। जिले के सन्ना, पंडरापाट, कवई, महुआ, सोनकुआरी, धवईपाई और गीधा जैसे क्षेत्रों की नाशपाती पूरे देश में प्रसिद्ध है। नाशपाती की भरपूर मांग के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आधुनिक उद्यानिकी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उद्यानिकी विभाग और नाबार्ड के सहयोग से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, पौधरोपण, बागवानी प्रबंधन और विपणन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: मेरा नाम विकास तिर्की, ग्राम ढाकमा से हूँ। मैं नाशपाती का खेती किया हूँ और नाशपाती का जो मैं उद्यान विभाग सेट से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग मेरा करीबन 5-6 साल हो गया नाशपाती का खेती किया हुआ। 2 साल मैं निकाल लिया, थोड़े कर लिया, लगभग मैं 50-60 हजार तक हर साल इनकम कर लेता हूँ। सरकार से मुझे यही मदद मिले, पौधा मिला मेरे लिए, खाद उद जो भी उद्यान विभाग से जो मिलता है दवा। बरसात के मौसम में ही खेती किए थे, लगाए थे पौधा। आमदनी 2 साल तो मैं निकाल लिया तो वही 40-50 हजार तक पहुंच जाता है साल में। हाँ, एक और ज्यादा भी हो सकता है। अभी फर्स्ट में निकल रहे ना।
2: अच्छा,
1: बंगाल से जो सप्लाई होता है।

0: फल उत्पादक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रही है।
1: मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह है और मैं नाबार्ड का जिला विकास प्रबंधक जसपुर। नाबार्ड के द्वारा जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत ट्राइब्स परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आदिवासी किसानों को उनकी बंजर एवं खाली पड़ी भूमि को एक सुदृढ़ बागवानी व्यवस्था, जिसे हम बाड़ी कहते हैं, इसमें विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी एक एकड़ की बागवानी के लिए पौधे, प्रशिक्षण, अन्य उपादान यानी इनपुट्स, संरक्षण की व्यवस्थाएं और उद्यानिकी कैलेंडर के अनुसार सतत मार्गदर्शन मिलता है क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से। इसके साथ ही जब फसलें तैयार होने शुरू होती हैं तो उनकी उपज की शुरुआत होने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से उपज की बिक्री के लिए सही मार्गदर्शन और सहयोग भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हर किसान को फसल की सही कीमत के साथ एक स्थायी आजीविका का साधन भी प्राप्त हो सके। जसपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में नाशपाती की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, जिनमें ऊंचाई 600 मीटर से अधिक और तापमान सीमा जो कि 2-3 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के परिसीमन में चाहिए होती है, वो उपलब्ध है। इन तथ्यों को देखते हुए वर्ष 2010 से इस जिले के बगीचा और मनोरा विकास खंड में लगभग 3,908 आदिवासी किसानों की कुल 2,200 एकड़ भूमि पे नाशपाती के पौधों का रोपण किया गया है। आज इन बगीचों से आदिवासी किसान नाशपाती का अच्छा उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और अपने बच्चों का अच्छी शिक्षा और आजीविका के अन्य साधनों को पुष्ट कर रहे हैं। जसपुर में नाशपाती की खेती मुख्य रूप से बगीचा और मनोरा विकास खंड के आदिवासी क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें बगीचा विकास खंड का कासन्ना तहसील, इनके इस तहसील के 42 गांवों में नाशपाती के बाड़ी विकसित किए गए हैं, जिनमें कोपा, पंडरू टोली, मैना, लरंगा, लोढ़ेना, डोभ, लोरो, पारासुरा, सिंधवार, अक्रीकोना, लोरो, छिछली, एकम्बा, झापरा, इचोली, चंपा, बहोरा और डूमरकोना प्रमुख गांव हैं। इसी प्रकार मनोरा विकास खंड के गीधा, बंदकोना, अंधला, हर्री, आमगांव, केराकोना और तिगड़ा गांव सहित अन्य गांवों में भी नाशपाती का अच्छा उत्पादन हो रहा है। इन क्षेत्रों की जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियां नाशपाती की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण किसानों को लगातार बेहतर उत्पादन मिल रहा है। अतः नाशपाती की खेती अब इन क्षेत्रों में आदिवासी किसानों के लिए आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। जसपुर जिले में उत्पादित नाशपाती अपनी बेहतर गुणवत्ता और आदिवासी किसानों द्वारा एक प्रकार से पारंपरिक कृषि पद्धति के अनुसार उगाई जाने होने के कारण एक प्रकार से प्राकृतिक उत्पाद है और इनकी बहुत अच्छी मांग भी देखी जा रही है। फसलों की तुड़ाई शुरू होने से लेकर करके अंतिम तुड़ाई तक बाजार से मांग और उसकी सप्लाई के लिए विक्रेताओं और क्रेताओं यानी जो सप्लायर्स होते हैं उनकी लगातार आवाजाही बनी रहती है और एक प्रकार से कहें तो कुछ हद तक यह एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोड में चलता है और किसी भी किसान का अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से किसी भी किसान का फसल एक दोयम दर्जे की फसल या द्वितीय श्रेणी का रेट इस प्रकार से अब तक होने की कोई शिकायत नहीं रही है। फसलों की बिक्री लगातार होती रही है और नाबार्ड और सहयोगी संस्थाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से हम बिक्री, संरक्षण और आपूर्ति तीनों प्रक्रियाओं में और इसके साथ साथ इसकी उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग के लिए नाबार्ड के सहयोग से भी और बाहर से भी हम प्रयास करके इसको संस्थानिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं।

0: नाशपाती की खेती में काफी फायदा और मुनाफा है। किसानों का इस फसल की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। भरपूर फसल के लिए खेती की नई नई तकनीकें किसानों को बताई जाती हैं। विभाग द्वारा किसानों को नाशपाती जैसी नगदी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ नाशपाती धान की तुलना में अधिक लाभ देने वाली फसल साबित हो सकती है। आने वाले वर्षों में जशपुर जिले में बड़े पैमाने पर नगदी बागवानी के और अधिक विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं।
1: मेरा नाम रंजनू चीख है। इसका शुरुआत हम लोग ऐसे किए कि कल्याण आश्रम से हमारे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, नाबार्ड में जुड़े हुए हैं। नाबार्ड के लोग बहुत सारा जगह पर उन लोग नाशपाती लगवाए और उन लोगों ने सोचा कि यहाँ करदना में भी कुछ नाशपाती और सेब की खेती लगाया जाए कह के सोचे और यहाँ इस गांव को चयन किए। और इस गांव को चयन किया और सबसे पहले 50 पौधा ला करके हम लोग को दिए ट्रायल के लिए। उसको हम लोग जी जान से लगा करके उसको जिंदा किया और साल भर के अंदर में फल देने लगा। फल देने लगा तो गांव के अगल बगल के लोग देखने आए, जिला से भी देखने आए, सब लोग देख करके खुश हुए। गांव के अगल बगल के लोगों को भी मन में लगा कि हम लोग भी लगाएंगे सोच करके उन लोग हर गांव में जैसे सैला हुआ, धसमा हुआ, इधर लगाए हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले लगाते समय गोबर का सड़ा हुआ खाद को दे करके लगाए हैं। और ये लगभग 3 साल का पौधा है और जो ट्रायल के लिए लगाए थे वो 4 साल लगभग हो गया। उसमें से हम लोग अभी पहली बार 35 किलो तोड़ करके बिक्री किए, लगभग 7,000 रुपया हम लोग को तुरंत मिल गया। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, 10 किलो 20 किलो एक एक पेड़ में आएगा तो और ज्यादा बदलाव होगा।

0: जशपुर जिला अब सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ के किसान आधुनिक बागवानी और नकदी फसलों की खेती से नई गाथा लिख रहे हैं। नाशपाती के अलावा यहाँ चाय के बागान हैं, लीची, स्ट्रॉबेरी और सेब की खेती भी होने लगी है। बेहतर मौसम, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग की बदौलत जिले में फलों के उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ रहा है।
1: मेरा निर्मल राम है। इसका पौधा तो हिमाचल प्रदेश से लाके दिए हम लोग को, फिर वहाँ से हम लोग को राजस्थान सब लाके दिए नबार्ड से। अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर फल देना चालू कर दिया ना, साल भर एक साल में फल देना चालू कर देता है, लेकिन पहले फल को तुड़वा देते हैं, फल का पौधा कमजोर हो जाता है। इसलिए बीते साल तो रांची सप्लाई किए थे, फिर इधर जशपुर में सप्लाई किए थे। पहले 5 साल पहले सेब का क्या बोलते हैं यहाँ देखने के लिए सुने भी नहीं पड़ रहा था, हिमाचल खाली में पड़ रहा था। मैं हिमाचल भी गया था, हिमाचल दे के आया हूँ, उधर कैसे खेती होता है, उसको खेती भी नहीं करते थे। तो अभी पौधा लगाया तो बहुत कुछ अलग अलग।

0: छत्तीसगढ़ इन दिनों विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कल तक यहाँ की खेती किसानी परंपराओं से बंधी हुई थी, वहीं अब धान के अलावा रबी और खरीफ की कई फसलें यहाँ ली जा रही हैं। बागवानी की अति आधुनिक तकनीकों ने किसानों को फलों की खेती की ओर अग्रसर कर दिया है। यही वजह है कि जशपुर के किसान अब नाशपाती की भरपूर फसल ले रहे हैं। इस पर सोने पे सुहागा का काम कर रहा है जशपुर का बेहद खुशगवार मौसम।
1: अपीड़ा से हाल ही में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने और स्थानीय स्तर पे जिला प्रशासन ने भी कुछ बातचीत प्रारंभ की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन या वर्तमान किसान उत्पादक संगठनों, जिन्हें हम FPO भी कहते हैं, के द्वारा इन उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग और यथासंभव यदि चीजें सामान्य होती रहीं तो हम इनका निर्यात भी देख सकते हैं।

जशपुर जिले के किसान खुश हैं। उन्हें अपनी गाढ़ी मेहनत से रसवंती नाशपातियां जो मिल रही हैं। जून की तपती दोपहरी में जब पेड़ नाशपाती के फलों से लद जाते हैं तो किसानों की झोलियां धन धान्य से भर जाती हैं। नाशपाती के बगीचों की मीठी मादक गंध बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जरा सोच कर देखिए कैसा दिलकश होता होगा ये नजारा। छत्तीसगढ़ की बेहतरीन किस्म की नाशपाती की मांग आज बेहद बढ़ गई है। जशपुर के साफ स्वच्छ पर्यावरण में अपना योगदान देती यहाँ की नाशपाती के रस की बात ही निराली है। नाशपाती की फसल के विस्तार की उम्मीद और मेहनत पर विश्वास की आस्था लेकर जशपुर के किसान लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओ

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। संचालन करता है नीलावती प्रधान, प्रस्तुत करता है रवि आनंद।

राम राम, जय जोहार संगी हो। बहुत बहुत स्वागत हावे आपन के मनपसंद कार्यक्रम हेलो संगी मा। मैं हवा आपन के रेडियो दोस्त नीलू प्रधान। तो संगी हो, आज फिर हम

0: लेके आगे हन ढेर सारा मनोरंजन, ढेर सारा प्यार और आप मन के मनपसंद गीत। अब देखथन आज हमार पहली फरमाइश लेके कौन संगी हमार संग जुड़ा था वे। हेलो
1: हेलो।
0: हेलो संगी, कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत है वे संगी।
1: हाँ दीदी, राम राम। मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले।
0: का नाम बताओ संगवारी?
1: भगत राम पटेल, सिंगारबाड़ी घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले।
0: बहुत सुखर संगवारी, हमारा आवाज पहुँचा थे कि नहीं आप मन तक?
1: बिल्कुल आते दीदी, बड़ा सुंदर आवाज आते आपके आकाशवाणी जी में, हमारे ऐप के माध्यम से बढ़िया सुंदर सुनखन और बढ़िया आवाज आते भी है दीदी।
0: हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संगी बतावा संगी, आज का गीत सुनना पसंद करिए आपन?
1: अब गीत तो इसे दीदी के चलत है अभी सावन के महीना,
0: जी
1: और खेती किसानी के जिन दिन है बड़ा सुंदर बड़ ढंग से चलत है। अब जैसे ही हरेली त्योहार आते ना, तो सब गीत का त्योहार है, मनो सब धीरे धीरे करके हमारे छत्तीसगढ़ में और गाँव अंचल में प्रवेश करते, बड़ा सुंदर ढंग से हम सब मनाथन दीदी।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज का गीत सुनाबो आप मल्ला?
1: हाँ तो हम ना सुन चाहते हैं दीदी के तोर आगे गुंगवाए वाला जिन है नकुल जा सवाल के ओखरे आवाज में ओखरे गीत का सुनना चाहते रहे दीदी।
0: ठीक है भैया, बहुत सुघर गीत के फरमाइश करे हवा।
1: और हम कहते रहे दीदी कि आप मन के जिन आकाशवाणी रायगढ़ है
0: वो हाँ।
1: बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम परोसते, तो एक सेती हम चाहते रहे कि हमारे पटेल परिवार की ओर से जिसका भैया निहार होकर गाढ़ा गाढ़ा बधाई भेजत हम दीदी।
0: धन्यवाद भैया धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी, जय जोहार, राम राम।
0: राम राम।
2: तोरे आगे घूंगवा थे सगा झड़ी मां सावन के, ए सगा
3: का ए सगा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो संगी, कार्यक्रम में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। वे संगी
1: धन्यवाद। मैं मोती मणिपुरी बोला धाम परसोली से।
0: का नाम बताओ संगी?
1: मोती मणिपुरी।
0: और कहाँ ले बोला था?
1: गणेश धाम परसोली से।
0: बताओ संगी, आज आपन का बुता काम करा था?
1: खेती किसानी काम करा था मेरी अभी तो।
0: का लगाया है अभी?
1: अभी हम धान की खेती करते हैं।
0: धान की खेती करता का? तो आज जो है आप मल्ला का शुभ घर गीत सुनवा वो बतावा।
1: आज हम राखी तिहार के पर्व आते दीदी, तो भाई बहनों के कुछ आधारित कोई भी कलाकार के सुना देते।
0: बहुत बढ़िया संगी,
1: आओ
0: चला सुनवाओ थन आपन के पसंद के गीत ला। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो संगी, कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत हवे संगी।
1: धन्यवाद।
0: कौन बोला था, कहाँ ले बोला था संगी? अपन परिचय बतावा
1: राम कुशल पटेल बोला था, हैदराबाद ले। सब
0: बतावा संगी, अपन के का हाल चाल है?
1: बढ़िया है, मौसम कानन चल रहा इधर।
0: बरसात हुआ थे कि नहीं हुआ थे
1: बरसात हुआ थोड़ा बहुत।
0: बतावा, आज अपन ला का गीत सुनवाबो?
1: चल संगी देवता ला मनाबो।
0: बहुत सुघर गीत के फरमाइश करे हवा संगी,
1: जो दो सबर के नाम लेना चाहता हूँ दीदी,
0: बतावा बतावा।
1: अशोक मरावी है, राम सिंह मरावी, राज मरावी, भूपेन यादव, सरवन साहू, छोटकू साहू, मनोज साहू, ये सब जुट के सुनते दीदी।
0: अच्छा, लेवत मन के सुघर गीत ला सुनवा थन। फोन करे बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: मैं बलदाव साहू बोला था, ग्राम दुभा से, जिला कबीरधाम।
0: का नाम बताओ संगी?
1: बलदाव साहू, जय राम दीदी।
0: राम राम, जय जोहार। और का बुता काम चलत है संगी?
1: पढ़त लग गए हवे, धान मा है नींदे ला, और तेरा काम गलत कर यू को खेत फाल में घूमे लाज था, देखे ला गाय मनाते खरसात में।
0: जी जी
1: सब बढ़िया है।
0: हाँ हाँ
1: पानी का मस्त है, भगवान देवत है, भर गई खेत मन है।
0: हाँ हाँ और पेड़ पौधा लगाया था कि नहीं लगाया था?
1: लगा था
0: अच्छा, का का पेड़ लगाए हैं अपन?
1: हमारा पीपल के पेड़ हवा है, बाबू जी लगाते संग में सहयोग देता है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया।
1: हाँ
0: का गीत सुनाबो अपन लाज?
1: ममता तो ना करके कोई भी गाना सुना दो दीदी।
0: ठीक है भैया, लेवा सुना था ना अपन ला, अपन के मनपसंद के ममता चंद्राकर के ये सुघर गीत ला। फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ ओके दीदी।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम। हेलो
0: हेलो संगी, बहुत बहुत स्वागत है
1: संगी।
0: बे हमारे कार्यक्रम हेलो संगी में।
1: हाँ राम राम।
0: राम राम। बतावा संगी, आपन के का नाम है?
1: मोहित राम साहू सहसपुर से बोला था।
0: मोहित राम साहू जी, कहाँ ले बोला था?
1: सहसपुर
0: कौन सा जिला बोला?
1: मुंगेली मुंगेली सहसपुर।
0: जी। और संगवारी, आपन के का हाल चाल है? आपन के परिवार सब कुशल मंगल है?
1: हाँ सब कुशल मंगल है सर आपन कृपा से।
0: जी। बतावा, आज आपन ला का गीत सुनवाबो?
1: सैलजीत साहब के सुना देता
0: शैलजीत साहू के?
1: जी ले कोई दिन गीत सुना देता सैलजीत साहू के था।
0: अच्छा ठीक है, चलो सुनवाओ थन आपन के मनपसंद के गीत ला। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

त संगी हो, यही गीत के संगे संग सिरावत है आज के कार्यक्रम हेलो संगी। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस भूपत सिंह धुर्वे के और प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन रवि आनंद जी और ये कार्यक्रम में संचालन करत रहे मैं यानी कि नीलू प्रधान। तो संगी हो, आज के कार्यक्रम हेलो संगी में मोला देव विदा। राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। संचालनकर्ता थी नीलावती प्रधान, प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी यही संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: भूपिंदर की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, खुद भूपिंदर की मौसिकी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं।

0: आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है।
1: कब आते हो, कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप से सिसकती रहती है। कब आते हो, कब जाते हो।

कब तक इंतजार करती? कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वाले की कोई आहट नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई न सरगोशी, आहट थी न जुम्बिश थी कोई। हाँ देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है कि घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाए। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शव इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
0: विशाल भारद्वाज की आवाज़।

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे पाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।

रंग तरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

0: क्या धड़कने का भाव लाया, बाबा क्या भारी।
1: शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र के बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत आज 18 अगस्त को पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। नागपंचमी के अवसर पर अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में कल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपये

0: की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

آئیے سنیے یادوں کی محفل. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار.

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आज की इबारत भी पोस्ट हुई और आप सभी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस शख्स को सलाम जो रात में घोलता है चांद की मिस्री, जिसका चांद पर कॉपीराइट है। उस शख्स को सलाम जिसे फूलों की बेलें अरबी में लिखी आयतें नजर आती हैं। उस शख्स को सलाम जिसने उम्र की लंबी सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए हैं, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो कलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया। उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया

जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए सात रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमीन पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि बिरहा की रात में जलना क्या होता है। देखी ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम। और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोले चांद की मिसरी, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा। कुछ श्रोताओं ने से लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था।

और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारी एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता हैं जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिख दिए हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता हैं जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहाँ पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

1978 में आई फिल्म घर का ये गाना। एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था।

और साहित्य के जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद आता है?

आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखती हैं, एक था बचपन बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं हैं तो ये गाना भाव विफल कर देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता मेरे दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई

के कमेंट्स शामिल किए जा सकें। एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया, आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूँ यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रख दी चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ कब से, तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था।

0: वो आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना है, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर

पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा। ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं। और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है। उन्होंने कभी अपनी नज्मों से, कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं, गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई। और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं। और वो जो गाना है वही है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए। और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम,

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी, ये बांग्ला गीत था।

जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना बना था। जेते जेते पुथो होले धीरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा से इनकी हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बम्बई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो होले दिरी, क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

और ये आवाज किस भी मिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं। वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं की कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, एक श्रोता लिखती हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की कलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता हैं जो कहते हैं कि गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना। एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा, वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले।

एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है, कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

0: मध्यम लगती है। ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी जरा बताएं तो।
1: छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले।
0: और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे?

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना शाद अली निर्देशक। किसी ने ये फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल सुरीला सफर।

दूनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए छाओ छम से नीचे कूदी क्या पंक्ति है ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है गाना और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना फटाफट बताना।

0: धन्नो का गुस्सा और धन्नो की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं है। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यों आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक

0: ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे, तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
2: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हमके समक्ष बताया गया और उस तथ्य को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
3: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी

0: नीतियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के

0: नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

संगीत भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जैन जी का।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या वो कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका लेते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना हैं। बताइए
2: वो तो मुझे पता है। अच्छा ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताए नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो वो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना
2: डर बैठ गया
1: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में।
2: और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल, और जैसे कि ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
2: बिल्कुल,
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरें पैदा करें।
2: सही बात है क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना था, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहे कि ना कहे, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
2: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे हम और मेरी जो बहन थी हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे फिर साइकिल पर बैठते थे चलाते थे
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती तो साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
2: बिल्कुल वही हाल था, लेकिन उसमें क्या होता था हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे उस पर चढ़ते थे।
1: क्या बात
2: फिर
1: है
2: वापस।
1: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पर बैठता था और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पर बैठता था।
2: लेकिन कैंची जो लड़के कैंची चलाते ना वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया चोट भी लगी। लेकिन
1: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था और अपने अनुभव साझा करें। क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते मतलब 5-6 साल की उम्र में तीन पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
2: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
1: हाँ तो वो भी अगर आपको याद हो आपके जहन में हो वो याद ताजा हो तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे बाद में दिलाएंगे, या सिखाने की बात होती, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बात।

0: ये अक्सर ही हुआ हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं, अच्छा तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
1: ना
0: और
1: करने का एक फायदा भी होता है
0: जी
1: कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते
0: बाहर आ
1: हैं।
0: जाते हैं
1: बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण
0: बिल्कुल
1: कर जाते हैं। जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग
0: बिल्कुल
1: उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करना करते हैं,
0: बिल्कुल
1: जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े
0: कहीं ना
1: होने
0: कहीं रह
1: तक।
0: जाता है उनके मन पर, रह जाती है ये बात।
1: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है
0: जी
1: कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक
0: बिल्कुल
1: विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनकी गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकती हर चीज को,
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते हैं, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती, वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं हैं, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा हैं। बेटियों में संस्कारों की छांव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें यह एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है, और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे

0: किसी से कम नहीं है। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
1: काम होता है,
0: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
1: मार्शल आर्ट
0: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
1: खुलकर सोच सकती है,
0: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही आपकी लड़की जिससे वो बताने में संकोच कर रही, क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
1: सही बात है, आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं, आत्मविश्वास से निडर बनाएं। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहां से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के 4th नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपनी बच्ची को अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
0: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं ये
1: जी।
0: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
1: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
0: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां 2 कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी, आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
1: नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची, किशोरी, कुमारी, ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार क्षम कही जाती हैं, आकाश को लांघकर चांद तक जा पहुंची हैं। आज की दुनिया में अब रहन सहन, परिधान, बोली भाषा, आहार विहार, शिक्षा, इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला

0: नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है। दया, क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्म संरक्षण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक साक्षरता, अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी।
1: हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूँ मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की ही टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे
0: जी।
1: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले न दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरें उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें, संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने, उन्हें इतना निडर बनाएं कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा ना करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
3: जी,
2: ये सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये जो फिल्म थी रश्मि रॉकेट, यहाँ इसमें भी एक ये लड़की की कहानी है जो दौड़ने में माहिर होती है।
1: बिल्कुल,
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, अब संघर्ष करती तभी वो जीतती।
0: बिल्कुल, तो संघर्ष करने से हारे नहीं पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही हैं। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और MBA के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था। वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: इंफीबीम की शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही है कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहां से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को, विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुंचे। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आप अपना ध्यान रखिए। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी, उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई, मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं वाहन से जुड़े
1: जी। और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी। और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला, बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया। अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं, हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी, वो एक लेडीज साइकिल।

0: थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था। अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतारती थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी। फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है, मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है। जैसे जैसे नई तकनीकी आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है, हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं जाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
1: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी, उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रुपए पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं। उन माता पिता से जरा पूछे उनका दर्द क्या होता है।
1: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए, हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर फिर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है, अच्छा, तो और हिलाते थे उसको। वो एक अलग ही, तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी तक याद है वो रंग में विभंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया, और तिलक जैसे ही ख़त्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया
1: बिल्कुल।
0: जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया गया, मतलब जा रहा था, और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना। तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया, तो
0: ये रंग में भंग
1: पड़ गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है, इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें

0: मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए, फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
0: तो भाई, ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगाजल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधार टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
3: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
3: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
1: जी जी।
3: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
1: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
2: शुरू हो चुका है ये
1: जी
2: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
1: क्या बात
2: तो
1: है?
2: आप वहां भी देख सकते हैं।
1: जी, आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले, जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो NSD की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
3: जी, मैं गलती से जब
1: मिली यशपाल जी से
3: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे NSD के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ. तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात. तो वहां मैं रही तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ.
4: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल. फिर क्या हुआ?
3: बस फिर हमारे फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे. फिर तो लड़ाई चलती रही.
4: अच्छा. पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले. यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए.
2: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी. एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ. तो 4थी बार किया तब हुआ.
4: अच्छा.
2: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा.
4: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया.
2: लेकिन 3 साल नहीं हुआ. 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में. तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया. तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया. तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था. प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा.
4: जी, तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
2: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते. तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा सा.
4: जी
2: हाँ, लेकिन एक एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा. कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त.
4: जी जी जी.
2: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था.
4: अरे. अच्छा.
2: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया. हाँ. कि अपने बाल करली करवा लिए.
4: अच्छा.
2: करली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो. तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था. तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया.
3: कुछ तो, ना कुछ करवाते ही रहता
2: था. बता रहा था भाई, 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त. 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त. तो बोला 400 रुपए में करवाए हैं बाल करली. तो जिस जो भी देखे रितु तलवार थे, वो भी अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने. तो बेचारा इतना परेशान हो गया. शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया. मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात.
4: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा. और वो आपके दोस्त भी हैं. तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
2: प्रतिभा जी.
3: पिया तो से नैना
4: लगे रे. वाह भाई, क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं.

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो मैंने उठाया था
0: जी,
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
2: वहाँ चल के
1: हॉस्टल से वहाँ तक, तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव,
0: अच्छा
1: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, अरे ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो।
0: अच्छा,
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं। बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे।
0: अरे
2: तो यशपाल के वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: हाँ,
1: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम उनका
0: ख्याल आ गया है।
1: हाय हाय हाय।

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई, वो बताइए।
1: नहीं नहीं हम लोग साथ में काम करते थे रेपर्टरी में, और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे।
0: कौन सा काम था?
1: रेपर्टरी में एज एन एक्टर काम करते थे, नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: दोनों लोग उसमें किरदार,
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में
0: जी,
1: मारिया
0: जी। यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं, अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए, गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप

0: रहते थे, बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी जी
0: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
0: वो,
1: था वो
0: स्ट्रगलर सब लोग स्ट्रगल, क्योंकि सस्ता था ना तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
1: जी
0: तो वहाँ रहते थे हम, तो वहाँ हमारे पास पेजर था। पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई टांग खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
1: जी जी
0: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
1: अच्छा
0: क्रिश्चियन लड़की का।
1: जी
0: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है। मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं,
1: क्या बात है।
0: तो मेरी तो ऐसे, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, नहीं ना थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
1: क्या बात है।
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त। आमिर खान मद्रास में थे, एआर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो, मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50,000 में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है, कितनी
0: फिर मैं
1: प्यारी
0: गया
1: बात है।
0: रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है,
0: अब देखो ये होता है। और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था। तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।

0: था कैसे न।
1: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
2: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था और आशुतोष गवारीकर ने सबको
1: जी,
2: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
1: जी।
2: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो और फिर गांव में एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था और यहाँ से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
1: अच्छा, क्या बात,
2: गौरी को देखने के बहाने
1: जी, जी, जी।
2: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूँ अब, इसके लिए मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो एक एहसास हुआ और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
1: जी।
2: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे भारतीय

0: परिवार की ओर से। आशुतोष जी, कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर। वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया।
0: बिल्कुल,
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
0: जी, और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
1: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
0: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर।
1: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग।
1: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगी प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: नहीं वो
0: तो
1: नहीं देखनी, यही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो।
1: सौम्य, सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ

0: पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जिसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।
1: ऋतिक रोशन की पहली फिल्म जो थी
0: कहो ना प्यार है,
1: कहो ना प्यार है।
0: है तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या क्या करूं। लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
2: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है। तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
1: नहीं, हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते आए थे, तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी, तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे, रघुवीर यादव, रघुवीर यादव
2: जी
1: उनके दिमाग में थे। पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे, वो क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
2: जी जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे।
1: नहीं, तब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
0: मनोर में थी लोकेशन, वहीं होटल ले रखा था हमने।
2: जी जी जी।
0: सब लोगों ने,
2: अच्छा,
0: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहते, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे, बच्चे भी साथ में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो फिल्म।
2: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी?
1: तो उस वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफकोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर सकते हैं।
2: बच्चे जब मिलते थे रोते थे तो फिर दिल...
1: नहीं, रोते भी थे, नहीं थे वो बड़े उस तरह के, अच्छा, बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
2: उनको पता था कि पापा को आगे बढ़ना है।
1: पर एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम चमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
2: जी जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं टेलीविजन से सीखते हैं, तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है।
1: हाँ, उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की जो जी सीरीज आई थी प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर। जी, तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी।
2: पंकज कपूर के साथ
1: कपूर
0: जी
2: थे साथ में काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था, एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई बात बताइए उनके साथ अनुभव कुछ।
1: हाँ, मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह और शुरू हो जाते थे, यहाँ से लकड़ी उठाओ, ये करो, इसको ये ठीक करो, मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो। मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे, यहाँ पे वहां पे। और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार बस,
0: अच्छा।
1: मेरा दिन बन जाता है। फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें है वो उनका, वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना, वहाँ गांव गांव था ना,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ, उस वक्त अच्छा, सौम्य पेट में था। हाँ
0: जी,
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी,
2: पहने हुए ही पैदा हुए, क्योंकि कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने।
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग हैं, उनकी फिल्मों के कितने सारे रंग हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर कोई रंग नहीं डाला। तो अब हम यशपाल जी की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। पहले फिल्मों की बात करें, या हमें लगता है कि हरियाणा की ओर चलते हैं, हिसार की ओर, बचपन की ओर चलते हैं। यशपाल जी बताइए, बचपन में बड़े शरारती किस्म के थे हमने कहीं सुना है, और वो शरारतें क्या थी जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी।
2: हमारी शरारतें क्या होती थी, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए,
1: मूलियां
2: चुरा ली, गाजर गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया,
0: अरे
2: लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कठम्बर, लोहा लंबर,
1: हाँ,
2: कोक लाखी पाखी, जिम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो फिर वो डिब्बियां ढक्कन ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा करना, गुठलियां, हाँ इमली की गुठलियां, वो भी बहुत, हाँ बहुत कीमती चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ इसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए। काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल,
2: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस
0: जी,
2: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा था वो
0: है, मालगुडी डेज,
2: मालगुडी डेज, यस, गालिब का एक सीरियल था,
0: मिर्जा गालिब,
2: फौजी, शाहरुख खान वाला, फिर वो एक दो और थे जो सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें।
0: तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे, तब उस समय मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के

0: में जानते थे, जैसे
1: हम
0: सीरियल
1: लोग
0: के नाम से हम लोग, हाँ,
1: यस,
0: हम लोग
1: यस,
0: से याद आया
1: बुनियाद
0: कि बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते
1: हाँ,
0: थे।
1: हाँ,
0: और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खासतौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है? तो
1: नहीं बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब
2: तो
1: और ज़्यादा खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज़्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी और शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है।
0: बिल्कुल, नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है?
1: अच्छा, वो बड़े न खेले छोटे खेल,
0: जी जी
1: हाँ हाँ वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है, और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया, फिर आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया, तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
0: जी
1: मतलब एक दिन मैं करता था एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
0: जी
1: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ या
0: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
1: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूँ मैं, तो तुम मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, NSD के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो तुम उनके बेटे हो
0: जी
1: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं, बात हो गई, तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं, तो मैं बोला ठीक है भाई, तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो लो, तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
0: जी,
1: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी मैं करूँगा, हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे, और हाँ और मेरा रोल बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में
0: जी।
1: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया,
0: जी बिल्कुल,
1: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पर
0: जी। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम
1: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है,

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने, आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है। तो ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी।
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को गंगा जल, देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मुझे, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप,

0: कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा
1: जी,
0: जी।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाए।
2: डोली में बिठाई के को
1: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, रामानुजनगर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, प्रेम नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ा डाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, बरपटिया, गोरगी, करचोला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रा नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये चिनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, रामपुर, पेंडारी, तनवारी, कोटराही, पोखरा, मदनपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, असकला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, बन कोम्बो, सारंगडाण, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारूढाब, देव डाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 89 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये तौलीपाली, बैगामार, जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, पूंजीपथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये नवागांव, चंद्रहाट, अचानकपुर, तालदादर, कोठारी, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुनते प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें, आज की शाम प्रसारित एवं

0: प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रम के बारे में अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा रूपक तीन रंग। लेखक हैं ML गौड़। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकते हैं आज शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा रक्तदान से स्वस्थ रहें संतुष्ट भी। साथ ही सुनिएगा क्रम करियर एडवाइस और चर्चा जुग जुग जियो अभियान पर। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:00 से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से सुनिएगा आज शाम 6:20 पर और शाम 7:00 से। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:00 से। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 10:00 से। तो ये थी जानकारी आज के साधिकारिक प्रसारण सभा में प्रसारित एवं मनोप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं रूपक तीन रंग। लेखक हैं ML गौड़।

भाइयों भाइयों भाइयों, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान बना था और आज से ही हम अपने संविधान के अनुसार पूर्ण आत्मनिर्भर हुए थे। आज के हर्ष और उल्लास के साथ आपको एक खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूं कि आज का झंडा वंदन हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति

0: के हाथों होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की थतकती ज्वाला से लेकर स्वतंत्रता की शीतल बयार तक देखी है। और वो व्यक्ति हैं हमारे गांव के माधव सिंह।
1: आइए दादा, ये लीजिए, झंडा फहराइए।
2: लाओ भाई।

0: इन तालियों की आवाजों के साथ याद आता है वो शोरगुल, इस भीड़ भाड़ में कहीं दिखाई देता है वो चीख चिल्लाहट का वातावरण। इस तिरंगे के तीन रंगों के साथ दिखाई देता है वो रंग जिसे देखकर शैतान भी कांप गया होगा। उन दिनों ये गांव, ये बस्ती इस तरह नहीं थी। खेतों की बालियां भी हवा में लहराने से डरती थी। गांव के पनघट पर मरघट की तरह मुर्दनी छाई रहती थी। हमसे खेत का लगान तक नहीं दिया जाता था। एक बार गांव में अचानक भगदड़ मच गई।
1: माधव भैया, माधव भैया।
2: क्या है किशन?
1: माधव भैया, कलेक्टर साहब आए।
2: क्यों भैया, और क्या बवाल आने वाला है?
1: बवाल क्या, लगान वसूल करने आए।
2: अरे मारे गए। अरे भैया, यहाँ खेतों में बोने को तो दाने नहीं, और लगान कहाँ से लाएं?
1: चाहे जो हो भैया, लगान तो देना ही पड़ेगा। तुम खेत में चाहे घास उगाओ, पर लगान वसूल करना इन अंग्रेजों का कर्तव्य है। उन्हें हमारे सुख दुख से क्या लेना देना।
2: अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो?
1: वो फिलहाल सुखदेवी के यहाँ है।
2: सुखदेवी?
1: हाँ।
2: अरे वो बेचारी कहाँ से लगान देगी? पिछले 2 साल से तो फसल पाला मार गई है। एक तो बेचारी अनाथ बेसहारा विधवा, ऊपर से लगान की मार।
1: तो चलो आप देखते हैं क्या होता है।
2: चलो भैया।
3: कुछ तो रहम कीजिए मालिक, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है।
4: तो हम क्या कर सकता है, तुम जो भी करो पर लगान तो देना ही होगा।
3: मैं आपसे अपने बच्चों की भीख मांगती हूँ। मैं बच्चों को वक्त की रोटियां तक नहीं दे पाती।
4: हम कुछ नहीं जानता, तुम बच्चों को जला दो, फेंक दो नदी में, पर आज ही हमको तुम्हारा लगान का पैसा मांगता है।
3: माधव भैया, किशन भैया, कुछ तो समझाओ इन्हें।
1: साहब कुछ तो दया कीजिए। पिछले ही साल बेचारी का पति टीबी से मर गया, घर बार देखने वाला भी कोई नहीं है। इस साल अच्छी फसल आई तो थोड़ा थोड़ा करके चुका देगी साहब।
4: थोड़ा थोड़ा, तुम कौन होता है मैन बोलने वाला?
1: सब
4: तुमको इतना दर्द है तो तुम ही क्यों नहीं देता उसका पैसा?
1: अरे मैं दे सकता साहब, तो आपसे इतनी बात ही क्यों करता?
4: तुम हमसे इतना बात करता है मैन, हम तुमको सबक सिखाएगा। सिपाही ला साले कुड़े,
1: आ मारो, आ और मारो, ताकि तुम्हारे अत्याचार के दिन भी खत्म हो जाए।
4: शट अप।
3: जाने दो साहब, जाने दो, मैं माफी मांगती हूँ साहब।
4: ओ यू, एक तो पैसा नहीं देता और ऊपर से बकवास करता है। चलो आओ गाँव में, आज सालों को मार मार कर मुर्दा बना दो। और तुम सुनो सुखदेवी, आज शाम तक कुछ भी करो, पैसा लेकर हमारे पास अनेक मांगता है।
1: आ, आ, आ, देख लिया तुम लोगों ने?
3: हाँ भैया।
1: सब गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे।
3: उठो भैया उठो, क्यों बोले, बेकार में मार पड़ी। मुझ दुखियारी को ही दुख सहने देते।
1: बहन, ये मार अगर मुझे न पड़ती तो हो सकता था ये भेड़िया तुम पर हाथ उठा देता। लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी आज से कसम खाता हूं कि इस गुलामी की जंजीर को तोड़ कर रहूंगा। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ कर रहूंगा। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ कर रहूंगा।
5: महात्मा गांधी की जय।
2: किशन, किशन ये क्या कर रहे हो?
1: छोड़ दो मुझे।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: माधव छोड़ दो मुझे।
2: किशन,
1: ये महायज्ञ है, इसमें आत्म

0: साथ होना देश के यज्ञ में पवित्र आहुति के समान है।
1: किशन,
0: चाहे सीने पर गोलियां चल जाएं, लेकिन हाथों से ये तिरंगा नहीं छूटेगा।
1: किशन,
0: नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा।
1: किशन, किशन, किशन, किशन,
0: माँ, भगवान ने इतनी कम उम्र क्यों लिखी थी?
1: नहीं नहीं किशन, नहीं।
0: काश काश मैं तुझे आजाद देख सकता।
1: किशन,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू आंसू मत बहा माँ, तेरे
1: किशन,
0: तेरे करोड़ों लाल तेरे लिए खड़े हैं माँ। तू आंसू मत।
2: दादा, आपकी आंख में आंसू?
3: नहीं मास्टर जी, आंसू नहीं, बल्कि मेरे उस साथी और अनेकों शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने आज ये दिन दिखाया। काश आज वो यहां होता और अपनी लगन तथा मेहनत का फल देखता। ये तो था आजादी मिलने के पहले का वो घिनौना रंग जो मैंने अपनी आंखों से देखा। किशन आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जरा सी कसक ने उसे आजादी का दीवाना बना दिया। आखिर वो दिन भी आया और देखते ही देखते आजादी के दीवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी कुछ ऐसा लगता था कि हमारे हाथ बंधे हैं, हम अपने ही घर में कैदी की तरह रह रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। संविधान की महत्ता को समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक बने और उन्होंने हमारे सफेद हाथों में जीने के लिए जीवन रेखाएं खींच दी। इस संविधान की वजह से ही हम आज पूर्ण रूप से आजाद हुए। बाद में पंचायत राज आया और ये उस संविधान का ही परिणाम है कि एक समय जो सुखदेवी अंग्रेजी हुकूमत से कांपती थी, वही सुखदेवी हमारी गांव की ग्राम पंचायत की पहली मेंबर हुई। वो दिन आज भी आश्चर्य का दिन लगता है।
4: नहीं साहब, नहीं।
5: सुखदेवी तुम घबराओ मत, ये तो गांव के खुशहाली के लिए ही है। तुम्हारी अपनी ग्राम पंचायत है और उसमें एक महिला मेंबर का होना जरूरी है। तुम कुछ पढ़ी लिखी भी हो और तुम ग्राम सेवा में अपना कुछ समय दे भी सकती हो।
4: नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं साहब, अब थोड़ा अच्छा समय आया है तो सुख से जी लेने दें।
5: अरे सुखदेवी, तुम भी किन दिनों की बात कर रही हो, वो तो गुलामी के दिन थे। अब तो ये गांव, देश सब कुछ हमारा है, हमारा अपना संविधान है जिसके सहारे हम अपने आप को, अपने गाँव को, अपने देश को जैसा चाहे वैसा संवार सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं।
3: हाँ बहन, इसमें हर्ज ही क्या है। हमारी पंचायत की बैठक में तुम्हें हिस्सा लेना होगा और हम जो गांव की भलाई के लिए सोचेंगे वही सारा गांव करेगा। क्यों भाई, आप लोग क्या चाहते हो?
6: ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है,
7: बिल्कुल ठीक है।
5: तो सुखदेवी बहन, मैं लिख लूं तुम्हारा नाम?
4: ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा। गाँव की भलाई तो भगवान की पूजा है।
5: ये हुई ना बात। हाँ तो भाइयों, पंचायत में सुखदेवी महिला मेंबर हो गई।
6: बधाई हो भाई, बधाई हो।

है जिसे इस देश के नक्शे में भरना है, उनके प्रयासों से हम आने वाले दिनों में संसार में आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाने के योग्य हो सकते हैं। मिलों की चिमनियों से उठता हुआ ये धुआं, लहलहाते हरे हरे खेत, फौजी जवानों के कदमों की ताल हमें एक नया जीवन दे सकती हैं और संसार में हम एक समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बन सकते हैं।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा रक्तदान से स्वस्थ रहें संतुष्ट भी। साथ ही सुनिएगा क्रम करियर एडवाइज और सुनिएगा चर्चा, विषय होगा जुग जुग जियो अभियान पर। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे से। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारे केंद्र से सुनेगा विविध संगीत आज रात्रि 10 बजे से। तो ये थी जानकारी आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
7: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और मैं एक बार फिर हाजिर हूं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी लेकर। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जमा करते हैं, पैसे, सामान, यादें, लेकिन सोचिए

अगर आपके पास मौजूद सबसे अनमोल चीज़ जिसे जमा करके दान करने पर किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए, तो इससे खूबसूरत बात और क्या होगी। यही खूबसूरती है रक्तदान की। रक्तदान सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का ज़रिया ही नहीं, बल्कि ये इंसानियत से जुड़ा एक ऐसा काम है जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन में उम्मीद बन सकते हैं। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या प्रसव जैसी परिस्थितियों में कई बार मरीज को तुरंत रक्त की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में उपलब्ध कराया गया रक्त किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे एक छोटे से प्रयास से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन रक्तदान करने से एक छोटी सी पहल बहुत मायने रखती है। एक रक्तदाता का योगदान जरूरत के समय किसी मरीज के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रक्त की जरूरत का कोई तय समय नहीं होता, किसी को भी कभी भी रक्त की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान की आदत समाज के लिए बहुत जरूरी है। रक्तदान का फायदा सिर्फ रक्त पाने वाले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, रक्तदाता के लिए भी ये एक अच्छा और संतोष देने वाला अनुभव हो सकता है। रक्तदान से पहले आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ जरूरी जांच की जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन, रक्तचाप और कई बुनियादी मानकों की जांच। इससे रक्तदाता को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सामान्य जानकारी मिल जाती है। हालांकि रक्तदान करने से पहले ये जरूरी है कि व्यक्ति रक्तदान के लिए योग्य हो और ब्लड बैंक या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार ही रक्तदान करें। दोस्तों, रक्तदान के बाद सबसे बड़ा फायदा शायद वो मानसिक संतुष्टि है जो ये सोचकर मिलती है कि हमने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। कई बार हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। रक्तदान ऐसा ही एक सरल और नेक कदम है जिसके जरिए हम समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हमें शायद पता भी नहीं होता हम रक्तदान किसे कर रहे हैं, पर हम उसकी जान बचा पाते हैं और इंसानियत का कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, रक्तदान को लेकर आज भी कई लोगों के मन में डर और गलतफहमियां होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा या हमेशा के लिए कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमारा शरीर लगातार नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है। रक्तदान के दौरान शरीर से सीमित मात्रा में रक्त लिया जाता है, जिसके बाद शरीर उसकी भरपाई करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। प्लाज्मा की मात्रा जल्दी वापस सामान्य होने लगती है और लाल रक्त कोशिकाएं भी दोबारा बनने लगती है। इसी वजह से स्वस्थ और योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित अंतराल पर रक्तदान करना सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। कोई भी ब्लड बैंक आपका रक्त तभी लेगा जब आप रक्तदान करने के योग्य होंगे। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या आपकी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति में कोई भी ब्लड बैंक आपको रक्तदान करने नहीं देगी। इसलिए रक्तदान से पहले रक्तदाता की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। दोस्तों, हमें अपने आसपास भी लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक जरूर करना चाहिए। अगर आप कभी रक्तदान करते हैं, लोगों से जानकारी साझा करते हैं, अपना एक्सपीरियंस या फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, जिससे आप कई लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं और समाज में रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो आइए रक्तदान को सिर्फ एक दिन की गतिविधि ना समझें, बल्कि इसे इंसानियत की जिम्मेदारी के रूप में देखें। जब भी हम रक्तदान के रूप में योग्य हों और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सके, तब आगे बढ़कर इस नेक काम में योगदान दे, जिसमें हम किसी की मदद करके अपने अंदर इंसानियत, खुशी और संतुष्टि को और बढ़ा लेते हैं। अगर आपकी उम्र

मैं 4 महीने की अंतराल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सांस को महसूस करें कि आपकी छोटी सी पहल किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है, इसलिए रक्तदान करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आइए कार्यक्रम

0: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आज के क्रम क्रम करियर एडवाइस में, जिसमें हम आपको करियर निर्माण संबंधी सलाह देते हैं, तो शुरू करते हैं क्रम करियर एडवाइस। दोस्तों बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में कोर्स कर सरकारी, निजी संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बेहतर करियर बना सकते हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब सिर्फ आपदा आने के बाद राहत और बचाव करना ही नहीं है, इसका दायरा इससे काफ़ी बड़ा है। इसमें आपदा आने से पहले संभावित खतरों और जोखिमों का आकलन करना, लोगों को जागरूक करना, बचाव की तैयारी करना, आपदा के दौरान तुरंत राहत पहुंचाना और आपदा के बाद
1: संचार कौशल और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। भूगोल, पर्यावरण, समाज सेवा और लोगों की मदद करने में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्षेत्र खास तौर पर यूजफुल हो सकता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए 12वीं के बाद विद्यार्थी BA in Disaster Management या BA

डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम या आगे शोध के लिए पीएचडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपदा प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए कई संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता जैसे संस्थानों में इसके कोर्सेज किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज जब प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की ज़रूरत बढ़ रही है, ऐसे में आपदा प्रबंधन युवाओं के लिए एक जिम्मेदार और उपयोगी करियर विकल्प बन सकता है। अगर आप में सेवा भाव, साहस और नेतृत्व क्षमता है तो इस करियर विकल्प को ज़रूर चुनें और अपने करियर को एक नई दिशा दें। दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत दिल मांगे मोर फिल्म का। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आज हम चर्चा में बातें करेंगे जुग जुग जियो अभियान के बारे में। जुग जुग जियो अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा 3 अगस्त 2026 को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर शुरू किया गया एक राष्ट्र जन जागरूकता अभियान है। इस अभियान के तहत अंगदान करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। अंगदान यानी अपने अंगों और उत्कों को जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने के लिए दान करना। कई ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें किडनी, लिवर, हृदय जैसे अंगों के प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति का अंगदान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। दोस्तों, जुग जुग जियो अभियान का संदेश बहुत खूबसूरत है। हमारा जीवन भले ही एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन हमारे अंग किसी दूसरे के जीवन में उम्मीद बनकर आगे भी जी सकते हैं। इसी भावना के साथ इस अभियान का उद्देश्य अंगदान को सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित न रखते हुए हर क्षेत्र और समुदायों तक जागरूकता पहुंचाना है। अंगदान को लेकर आज भी समाज में कई तरह की गलतफहमियां और झिझक भी देखने को मिलती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आइए अंगदान को लेकर अपनी सोच बदलें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि अंगदान सिर्फ अंग देना ही नहीं बल्कि ये किसी परिवार को उसका अपना लौटा सकता है और किसी ज़रूरतमंद को एक नई जिंदगी दे सकता है। इसलिए दोस्तों, अंगदान करें और किसी को नई जिंदगी का उपहार दें। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुछ न कहो फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपने रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे यश होता हुआ कार्यक्रम युवाणी FM 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रूपये का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंजम से यूरोप के पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.5

0: 16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुने थे प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:05 में आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7 से। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8 से। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 10 से। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें हम आपके लेकर आएंगे आज रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 11 से। अंग्रेजी में समाचार होंगे आज रात्रि 11:05 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जयमाला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।
8: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
9: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला

0: माध्यम एफएम रायगढ़, तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। बाढ़ जैसन आपदा ले निपटे के तैयारी ला परखे पर आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के जम्मू जिला में हरेली बर्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। और संस्कृति और राजभाषा संचालनालय है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश के लोक कलाकार मन ले 31 अगस्त तक मंगाए आवेदन। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसन प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम सुनिश्चित करे के संग आने आने विभाग और संबंधित एजेंसी के बीच बने ढंग ले समन्वय स्थापित करे के उद्देश्य ले आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। एकर आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और राजस्व आपदा प्रबंध विभाग डहर ले केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मदद ले करेगी। ये दौरान बाढ़ प्रबंधन, प्रभावित मल्ला मदद, मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय और चेतावनी के संगे संग सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम ले डाउनस्ट्रीम के गांव मल्ला पहली ले सचेत करे ऊपर गोटबात करेगी। उन्हें बाढ़ आपदा के समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर सेना और आने आने बचाव दल में आपसी समन्वय ऊपर घलो गोटबात हुई। बैठक में राजस्व आपदा प्रबंध के सचिव समी आबदी आपदा के दौरान तुरते निर्णय, संसाधन के सुघर उपयोग और जम्मू जुड़े विभाग के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दीन। राजस्व आपदा प्रबंध विभाग के अधिकारी मन बताइने कि 20 अगस्त के राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित करी जाही। इमा प्रदेश के जम्मू जिला के अधिकारी मन शामिल होही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राजा आज रायपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी समिति के सदस्य मल्ले भेंट करी। ये दौरान डॉ सलीम राजा समिति के सदस्य मल्ला आम नागरिक मल्ला यूसीसी के आने आने पहलू मल्ला समझाए बर सरल भाषा में एक ठीन पुस्तक प्रकाशित कराए के सुझाव दिन। सदस्य मन राज्य के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक संगठन और आम जनता मल्ले यूसीसी के ड्राफ्ट पर अपन सुझाव साझा करे के आग्रह करी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के प्रस्तावित जन सुनवाई लेके एसीसीएल कोरबा के महाप्रबंधक ले चर्चा करी। ए दौरान उमन मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना ले जुड़े लंबित काम के निराकरण और काचांदी नाला डायवर्सन के प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट मिले के बाद जन सुनवाई आयोजित करे के निर्देश दिन। खबर के मुताबिक मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता ला 5.25 एमटीपीए ले बढ़ा के 7 एमटीपीए करे जाए के प्रस्ताव है। एकर बार 21 अगस्त की जन सुनवाई होना है। मुख्य सचिव विकासशील के अगुवाई में काली रायपुर में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादक के फायदा, महिला दुग्ध उत्पादक के भागीदारी बढ़ाए और दूध संग्रहण के संगे संग विपणन व्यवस्था मजबूत करे ऊपर चर्चा हुई। संगे संग बस्तर और सरगुजा संभाग में डेयरी विकास ला लेके विशेष जोर देगी। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के 33 जिला में 14 से 16 अगस्त तक हरेली बर्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। ये अभियान में 1000 से ज्यादा प्रतिभागी मन भाग ली। ये दौरान प्रदेश भर में 35 बर्ड वॉक आयोजित करेगी। 3 दिन में 954 ई बर्ड चेकलिस्ट के माध्यम ले 211 पक्षी प्रजाति के दस्तावेजीकरण करेगी।

0: बरेली बर्ड फेस्टिवल के उद्देश्य सिर्फ पक्षी मन की गणना नहीं करना है, बल्कि नागरिक विज्ञान के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के पक्षी विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना हवे। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के लालच दे के करीबन 1,15,00,000 रूपये के ठगी करैया 4 आरोपी मन ला रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार करे है। ये आरोपी मन ला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ले पकड़े गए है। आरोप है कि ये मन हा छत्तीसगढ़ के 3 मनखे ले करोड़ों रूपये के ठगी करे है। 3 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके रायपुर लाए गए है। पुलिस आरोपी मन ले जब्त मोबाइल के जांच करत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाची समाचार कोती। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय हा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश के लोक कलाकार मन ले 31 अगस्त तक आवेदन मंगाए है। योजना के तहत नृत्य संगीत लोक नाट्य लोक गाथा छत्तीसगढ़ी गीतकार वाद्य यंत्र वादक शिल्प कलाकार छत्तीसगढ़ी पाक कला और छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला ले जुड़े कलाकार मन आवेदन कर सकत है। पात्र कलाकार मन ला चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन कराना जरूरी होगी। चुने गए कलाकार मन ला हर बछर 12,000 से 24,000 रूपये तक प्रोत्साहन राशि दे जाही। संस्कृति विभाग डहाले रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में 21 ले 25 अगस्त तक पावस प्रसंग के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता उमंग उल्लास और संवेदना मल्ला शास्त्री नृत्य और संगीत के माध्यम ले अभिव्यक्त करे जाही। कार्यक्रम हर दिन संध्या 7 ले शुरू होही। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच कोती ले भिलाई मां काली ले अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के आयोजन करे जाही। 2 के ये सम्मेलन के पहले दिन काली 19 अगस्त के भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में और 20 अगस्त के भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। साइबर जागृति अभियान के तहत रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आज छात्र छात्रा और इंटर्न्स पर विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये दौरान पुलिस अधिकारी मन युवा मन ला साइबर अपराध के नवा तरीका ऑनलाइन धोखाधड़ी ले बचाव और बुनियादी साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूक करीन। कार्यक्रम के दौरान युवा मन ला अभियान के मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी ले जोड़ेगी। रायपुर विकास प्राधिकरण RDA हा टाउनशिप योजना शुरू करे है। नवा रायपुर के तीर पीरदा और तुलसी गांव के करीबन 355 एकड़ भूमि में प्रस्तावित ये टाउनशिप पर भू स्वामी मल्ले दावा आपत्ति मंगाए गए है। योजना के तहत 879 भू स्वामी मल्ले दावा आपत्ति मंगाए गए है। RDA के CEO अवनीश शरण बताइन है कि प्रस्तावित योजना में भू स्वामी मल्ला 40% विकसित जमीन लहुटाए के प्रावधान है जौन ला दिसंबर महीना तक पूरा करे के लक्ष्य रखे गए है। समाचार सार मा राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 28 अगस्त के राखी तिहार देखत प्रदेश के कोषालय और जम्मू बैंक मन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है काली जसपुर जिला के बगिया में जसपुर वन मंडल के जन जागरूकता अभियान में आधारित गजरथ यात्रा भाग 2 के विमोचन करी। रायगढ़ जिला में नजुल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। जिला प्रशासन ई नजुल व्यवस्था लागू करे है। एकर तहत नजुल पट्टा धारक मन मोबाइल फोन ले घर बैठे पट्टा नवीनीकरण पर आवेदन कर सकही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधर मंडल में 5वां लाइन के कमिश्नरिंग पर 25 सितंबर ले 14 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग के काम होही। एकर सेती 25 सितंबर ले 14 अक्टूबर तक 16 ट्रेन रद्द रही। उन्हें कुछ एक ट्रेन मन के रूट में बदलाव करे जाही। और सामान्य भविष्य निधि ले जुड़े लंबित प्रकरण के निराकरण पर दुर्ग स्थित जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय में काली ले 3 के शिविर के आयोजन करे जाही। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश भर में अब तक हुए बारिश के आंकड़ा जारी करे है। एक मुताबिक अब तक औसतन 731

0: 6 मिलीमीटर ले ज्यादा वर्षा दर्ज करे जा चुके हे, जौन पाछू 10 बछर के औसत बारिश के करीबन 99% हवय। विभाग के मुताबिक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में सबले ज्यादा पानी गिरे हे, उहें कांकेर और सुकमा जिला में वर्षा के आंकड़ा सामान्य ले कमती हवय। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर, बाढ़ जैसन आपदा ले निपटे की तैयारी ला परखे बर आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के जम्मू जिला में हरेली वर्ल्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। और संस्कृति और राजभाषा संचालनालय है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश के लोक कलाकार मन ले 31 अगस्त तक मंगा है आवेदन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावा थे, जय जोहार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाजों में फिल्म सनम बेवफा का ये शीर्षक गीत। सावन कुमार के लिखे बोलों को संगीत से संवारा है महेश किशोर ने।

0: फिर तेरी कहानी याद आई। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। कैफी आजमी के लिखे बोल, संगीत अनु मलिक का था।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com SHROTARAIGARH यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: संगीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। संगीत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: उड़ान ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बने खाबो बने रहबो नाम से प्रदेश भर में 7 दिवसीय विशेष जनजागरूकता अभियान चला रहा है। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरेली बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन। और गोरेला पिंडरा मारवाही जिले में आज से शुरू हुई 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। इस दौरान बाढ़ प्रबंधन, प्रभावितों को सहायता, मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय और चेतावनी तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से डाउनस्ट्रीम के गांवों को पहले से सूचित करने पर चर्चा की गई। वहीं बाढ़ आपदा के समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, नगर सेना और अन्य बचाव दलों में आपसी समन्वय पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन की सचिव शम्मी आबिदी ने आपदा के दौरान त्वरित निर्णय, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर विशेष जोर दिया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी शामिल होंगे। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बने खाबो बने रहबो अभियान के तहत प्रदेश में 7 दिवसीय विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अभियान के पहले दिन कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिठाई दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, कन्फेक्शनरी, थोक विक्रेताओं, खाद्य निर्माण इकाइयों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए गए और कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों को रखने अथवा पैक करने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने के संबंध में व्यापारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को समझाइश दी गई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवंगन ने मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना की प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से जुड़े लंबित कार्यों का निराकरण तथा काचांदी नाला डायवर्सन की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता को 5.25 MTPA से बढ़ाकर 7 MTPA किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 21 अगस्त को जनसुनवाई होनी थी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बस्तर परिक्षेत्र के अभियंताओं और ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्माणाधीन सड़कों, पुल पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन सड़कों और पुल पुलियों को दिसंबर महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही हर 15 दिनों में कार्य की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। श्री बंसल ने निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले और निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। योजना के अंतर्गत नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़

0: गीतकार, वाद्य यंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला और छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला से जुड़े कलाकार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को हर वर्ष 12,000 से 24,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर करीब 1,15,00,000 रूपये की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में छापेमारी कर पकड़ा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों से करोड़ों रूपये की ठगी की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। पुलिस आरोपियों से जब्त मोबाइल की जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 14 से 16 अगस्त तक हरेली बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अभियान में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेशभर में 35 बर्ड वॉक आयोजित किए गए। 3 दिनों में 954 ई बर्ड चेकलिस्ट के जरिए 211 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। हरेली बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य केवल पक्षियों की गणना करना नहीं बल्कि नागरिक विज्ञान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना था। संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में 21 से 25 अगस्त तक पावस प्रसंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता, उमंग, उल्लास और संवेदनाओं को शास्त्रीय नृत्य और संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा। कार्यक्रम हर दिन शाम 7 बजे शुरू होगा। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। इसके साथ ही गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, सक्ती और कबीरधाम जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। तुलिका प्रजापति कबीरधाम जिले की नई कलेक्टर होंगी। वहीं जयश्री जैन सक्ती, अमृत विकास तोपनो मुंगेली, कुंदन कुमार कांकेर और रणबीर शर्मा गरियाबंद जिले के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटा दी गई हैं। उनके स्थान पर सौमिल रंजन चौबे को पर्यटन मंडल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर पिंडरा के फिजिकल कॉलेज मैदान में मंच निर्माण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 10 लाख और विधायक अटल श्रीवास्तव ने 5 लाख रूपये देने की घोषणा की। 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्पर्धा में जिम्नास्टिक के मुकाबले गौरेला में खेले जाएंगे। वहीं क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी के मुकाबले पेंड्रा में आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में कल से अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के पहले दिन कल 19 अगस्त को भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में और 20 अगस्त को भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि यह स्थिति उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के कारण बनी है।
1: आगामी 24 घंटे में अवदाब क्षेत्र जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी का और झारखंड और बिहार का तरफ जाने की संभावना है। इस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है। कल प्रदेश में वर्षा का गतिविधि थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव ज्यादातर होने की चांसेस है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है सरगुजा संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश के कोषालय और सभी बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र के बीएससी, कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में पांचवी लाइन की कमीशनिंग के लिए 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसके चलते 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा और सामान्य भविष्य निधि से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दुर्ग स्थित जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय में कल से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बने खाबो बने रहिबो नाम से प्रदेश भर में 7 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चला रहा है। पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरेली बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन और गोरिल्ला पिंजरा मारवाही जिले में आज से शुरू हुई 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनाते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में फिल्म टशन का ये गीत। कौशीर मुनीर के लिखे बोल संगीत विशाल शेखर का है।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म प्यार तो होना ही था का ये गीत।

0: प्यार तो होना ही था। अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में इस गीत को। विनोद मोहन के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म सनम से। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में गाया ये गीत समीर का लिखा और आनंद मिलिंग के संगीत से सजा है। तो लीजिए पहले सुनते हैं संदेश, फिर सुनेंगे फिल्म सनम का ये गीत।
1: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों

अभी आप सुने थे फिल्म संगीत कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

संगवारी हो, आप बेरा है हेलो किसान वाणी के। आज के विषय है शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी। ये विषय में आप मन की जिज्ञासा और समस्या के समाधान पर हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू, वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग। संचालन करते हैं निधि शर्मा और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।

0: संगवारी हो, हमारे यहाँ रिकिम रिकिम के फूल लगाए जाते हैं और फूल के तो बड़ महत्व है। हर मौसम में फूल के बड़ उपयोगिता है। देखो, चाहे वो पूजा पाठ के काम बुता रहे, चाहे सामाजिक काम बुता रहे, फूल हर मौसम में हमन मल्ला काम आते। सजावट में घलो हमन मल्ला फूल काम आते। फिर शीतकालीन फूल के नर्सरी कौन ढंग से करे जाए, ये काबर जरूरी है, सही बेरा का होते और ओखर बर हमन मल्ला कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी और अपमन के जिज्ञासा के समाधान करे खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी। आप मन पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुरुगले हो, आप मन के स्वागत करथन साहू जी। राम राम।
1: राम राम
0: साहू जी। हमारे संगवारी मन के फोन कॉल आवत है, सुनथन संगवारी मन का पूछना चाहते। हेलो किसान वाणी, कौन बोला था गा, कहाँ ले?
2: मैं दानियाम चंद्रवंशी बोला था भैया, लखनपुर कावरधस।
0: हाँ चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, का पूछना चाहते हो आज आप मन?
2: पुष्प खेती के उखर थरहा दे बर बीज कहाँ से मिली भैया, वो भी पूछे बर लगा तो लगाना है कि।
1: राम राम चंद्रवंशी जी, जैसे आपने कहा कि आपको फूलों के बीज चाहिए, तो अगर आप व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के भारत में जो ICR के संस्थाएं हैं, जैसे IIHR हो गया, ICR की पुणे, DFR पुणे की है, और इसी तरह IRI दिल्ली की, ऐसे बहुत से संस्थान

0: वहां से आप बीज खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आप चाहें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से बीज खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरापाटन दुर्ग से आप बीज खरीद सकते हैं। और जैसे चंद्रवंशी जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रश्न किया है, क्योंकि बीज ही नर्सरी की या फसल की प्रथम सीढ़ी है, तो हमें जब भी बीज खरीदें या खरीदना हो तो एक स्वस्थ बीज ही हम कहीं से भी हम खरीदें, और जहाँ के लिए हम खेती करना चाह रहे हैं उस वहाँ की जलवायु के अनुसार ही हमें बीज का सिलेक्शन करना चाहिए, चयन करना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और अगर व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ना है तो हम और भी अच्छे उपयुक्त हाइब्रिड बीज का चुनाव करें, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: आशा करते हैं चंद्रवंशी जी के आप मन की समस्या के समाधान हो गए हुई फोन करे एकर खात मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी, कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
1: हाँ दीदी, राम राम।
2: राम राम,
1: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोलत हूँ।
2: हाँ साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के।
1: आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ कैसे चलत है काम बुत आप मन के?
1: काम बुत बढ़िया चलत है, अभी निंदाई कोड़ाई है और थोड़ा पानी वानी है तो नहीं गिर पाते।
2: अच्छा, ओको थी पानी नहीं गिरी से कहे बखत?
1: अभी उसका पानी नहीं गिरी जब तक भरना चाहिए धान मंडल, पानी की समस्या है। हाँ अब तो वही बोर वगैरह पानी है वही डाले था, काम चलाना है ठीक है। जब तक वर्षा के जन प्राकृतिक रूप से नहीं गिरी तब तक खेत के जन प्यास है वो नहीं बुझा पाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो साहू जी, आज की जो विषय है हमारे शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी, तो ये विषय से जुड़े आप मन के कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, तेला आप मन पूछ सकते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
1: तो हमला जैसे गेंदा है कि नर्सरी तैयार करना है।
0: हाँ हाँ।
1: जैसे व्यवसायिक रूप से तो खाली हमला का करना पड़ी, खेती बर का लगी, खातु माटी पानी, ताकि हमला फूल की खेती बढ़िया से हो सके, वो हमारे पर लाभ मिल सके, ये जानकारी आप दे के कष्ट करो।
0: साहू जी, जैसे आपने कहा कि आपको नर्सरी पहले तैयार करना है ना, और उसके बाद खेती की है।
1: हाँ।
0: साहू जी, सबसे पहले बात यह है कि नर्सरी हमें जब भी जगह बनाना है या नर्सरी कहीं तैयार करना है तो नर्सरी के लिए एक अच्छा स्थान का चुनाव करना चाहिए। ऐसे ऐसे हाँ। जगह में नर्सरी का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, मतलब पानी की उपलब्ध हो। जैसे आपने आप बता रहे हैं कि आपके पास बोर की सुविधा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार जल भराव की समस्या ना हो ना, और अतिरिक्त पानी निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तेज हवाओं से पौधों को सुरक्षा हो सके, जहां से आप ऐसे जगह होने चाहिए जहां आप नियमित निगरानी कर सके, क्योंकि वो नर्सरी है तो ज़्यादा ध्यान देने की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आपकी नर्सरी का स्थान परिवहन की सुविधा हो, ताकि आसानी से आप अगर व्यावसायिक स्तर पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो वहां से परिवहन की सुविधाएं आसानी से हो। अब बात करते हैं नर्सरी बेड के बारे में। ये तो नर्सरी की स्थान के बारे में हो गई, अब नर्सरी का बेड जैसे तैयार करना है तो सर्वप्रथम आपको नर्सरी का बेड तैयार करने के लिए जमीन की जुताई 2-3 बार करनी चाहिए अच्छे से। फिर जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको आप छोटा छोटा महीन बना लें, और 1 मीटर चौड़ा और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनाएं, और उसका अगर साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नहीं है तो आप 3 मीटर लंबा रख सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। और ऐसी कम से कम अगर गेंदा की नर्सरी है 8 से 10 बेड आपको बनाने पड़ेंगे, और इस जिससे आप 1 हेक्टेयर में आसानी से गेंदा की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए याद रखिएगा, अगर आप बीज लेते हैं तो विश्वसनीय स्रोत से आप बीज खरीदें। और इसके लिए गेंदा के बारे में बात करें तो 1 से 1.5 केजी बीज पर्याप्त रहता है 1 हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ की खेत की प्रतिरोपण के लिए, रोपाई के लिए। और जब पौधे आपके जब आप रोपाई करें तो ये ध्यान में रखें कि जब पौधा 20 से 25 दिन के हो जाएं, ये सबसे उपयुक्त होता है, उपयुक्त अवस्था होती है। जब 3 से 4 उसमें पत्तियाँ आ जाएँ तो इस प्रकार के जो स्वस्थ पौधे हैं, याद रखिएगा स्वस्थ पौधों के ही हमें जो हमारा खेत है वहाँ हम उसको प्रतिरोपित करें, और कोशिश करें कि हम जब भी प्रतिरोप

0: करें, रोपण करें तो शाम के समय करें और मतलब दोपहर के बाद करें। तो इस तरह के से हम अपनी अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और दूसरी एक और तकनीक है नर्सरी तक उगाने के डेट में, पोट्रे नर्सरी जिसको बोलते हैं। तो आप देखे होंगे बाजार में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पोट्रे आते हैं जिसमें सेल बने रहते हैं, मतलब खांचा बना रहता है 106 का 109 का ऐसे अलग अलग। तो प्लास्टिक के ट्रे रहते हैं जिसमें खासतौर पे आपको बहुत आसानी होगा, ऐसे बहुत ही ऐसे जो ट्रे रहते हैं बहुत ही सस्ते कीमत पे आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे और जिनमें आप आसानी से सॉइललेस मीडिया का उपयोग करके जैसे कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया और उसके साथ मिक्स करके आप उसको एक एक बीज को एक एक सेल में लगा सकते हैं। तो इससे जो पौधा तैयार होता है काफ़ी मजबूत होता है, हेल्दी रहता है और ये आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह इसको परिवहन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए अगर गेंदा की बात आती है तो ये बीज से हुआ। गेंदे का प्रवर्धन आप जैसे पूर्व में मैं बताया था कि आप वनस्पति उसके ऊपर पोर्शन को काट करके, ऊपर भाग को काट के टर्मिनल कटिंग जिसको हम बोलते हैं उससे भी उसका प्रवर्धन कर सकते हैं और इससे कम समय में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पौधे स्वस्थ हैं जिनमें किसी प्रकार के कीट एवं बीमारियां ना हो ऐसे पौधों के ऊपरी भाग को आप 4 से 5 सेंटीमीटर वाले भाग को आप कट करें। कट करने के बाद आजकल हार्मोन्स आते हैं जो जड़ फैलाव को इनहांस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स IBA या रूटेक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो इन्हें आप उनको बस टच करा के आपके तैयार कोकोपीट या फिर जो भी आपका मीडिया है आप उसमें लगाएं तो आसानी से आप एक कम समय में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और चाहें तो व्यावसायिक रूप से इसकी नर्सरी आप खुद बना के नर्सरी के रूप में आप बेच सकते हैं।
1: जानकारी दे उखल जी, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। साहू जी आप मन फोन करे हो, आप मन के अंत असले धन्यवाद
1: धन्यवाद।
2: हेलो किसानवाणी।
3: हाँ दीदी, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। राम राम।
2: राम राम पटेल जी, कैसे चले थे आप मन के काम बूता?
3: बढ़िया दीदी, ये नदी के जिन मौसम है ना वो बिल्कुल ऐसे पानी गिरा थे कि हमार काम भी चला थे और बढ़िया लगातार पानी भी गिरा थे तो मन जिन्हें बहुत गदगद है दीदी।
2: बढ़िया। आज के जो हेलो किसानवाणी के विषय आप मन ला मालूम हो ही, शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी। हाँ तो अपन लगाते हो का फूल उल अपन बारी बकरी में?
3: अब थोड़ थोड़ खेती सबके करे पड़ते दीदी, एक जन भाई लंग खेती फूल की खेती करवाथन, एक जन सब्जी खेती करवाथन और सब बिल्कुल ऐसे है कि लगे हुए काम करा रखन तो कार्य जिन्हें बढ़िया सुचारू रूप से चलते दीदी।
2: बिल्कुल, अब देखो मौसम का जुड़ा गए है ना, और अब पुष्पों की जिन खेती है देखा जाए तो यही बखत रही थे जिन उनका जड़ पकड़ थे के आप मन तना में लगा थे कोनो बीज के थरहा लड़ा डाला थे। ये विषय से जुड़े कुछ सवाल हो ही, शंका हो ही, तिला अपन हमारे विशेषज्ञ मन से पूछ सकते भैया?
3: हाँ दीदी, तो हम आज जानना चाहथन कि जिन हमन फूल की खेती करना चाहथन शीतकालीन तो उनका जिन नर्सरी तैयार करे खातिर हमन लग कौन कौन बात का ध्यान करना है और ठंड के समय में कौन सा पुष्प की खेती हम कर सकते जेकर से हमका अच्छा उत्पादन मिल सकत है, बारे में जानना चाहते रहे दीदी।
2: बिल्कुल, तो विशेषज्ञ मन बतावा थे भैया जी।
0: राम राम पटेल जी, जैसे आपने कहा कि कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें नर्सरी में, तो सबसे पहले है कि हम जो भी बीज खरीद रहे हैं वो बीज एक अच्छी संस्था से खरीदे। दूसरी चीज, जब हम बीज खरीदते हैं तो उसमें ये देखें कि उसमें जर्मिनेशन परसेंट कितना है, मतलब कितना हम बीज लगा रहे हैं तो कितना उगे, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, तो उसके हिसाब से हमें उन बीजों को खरीदना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हमें सही समय पर रोपण करें, सही समय पर हम नर्सरी तैयार करेंगे तो मार्केट में सबसे पहले हम ये देख लेना चाहिए कि बाजार में कब फूल जो है ज़्यादा बिकता है या ज़्यादा रेट पे बिकता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में जो सामान्य रूप से देखते हैं कि दिवाली के अवसर पर जब फूल का रेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इस तरीके से प्लानिंग करें कि आप नॉर्मल जो सामान्य मौसम है या सामान्य सीजन है उसके विपरीत आप ऐसे समय पे जिस पे फूलों की खेती या फूलों का मूल्य जो है बहुत ज्यादा रहता है, 150-200 रुपया किलो तक पहुंच जाता है, तो ऐसे आप प्लानिंग करें। ध्यान रखें कि जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो करीबन 20 से 25 दिन लग जाता है, मोटा मोटा एक महीना। तो उससे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए एक कि मैं इस दिन लगाऊंगा तो दिवाली इतने दिन है और गेंदा में

0: जो भी आप वैरायटी किस्म लगाते हैं उसका एक ले लीजिए कि कितने दिन में इसमें फूल आते हैं। सामान्य तौर पे 50 से 60 दिन बाद उसमें अच्छे से फूल आना शुरू हो जाते हैं, और इसकी तोड़ाई आप 3, 4 से 5 बार तक गेंदा की कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्लानिंग बनाएं ताकि मैं मैक्सिमम रेट पे जाता है उस रेट पे हम बेच सकें। तो ये चीज़ है कि आपको प्लानिंग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक आपको इनकम हो। उसी प्रकार जब हम आप नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में ये रहता है कि आप अच्छी भुरभुरी, आप चाहें तो पोट्रे नर्सरी का उपयोग कर सकते हैं, या जब हम नर्सरी बेड बनाते हैं तो नर्सरी बेड अच्छी तरीके से ऊंचाई वाली 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट वाली बनाएं ताकि किसी प्रकार से जल भराव की स्थिति ना हो, बीमारियों का प्रकोप ना हो, कीटों का प्रकोप ना हो। और जब भी आप नर्सरी में सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा जल भराव से बचें। और दूसरी चीज़, जब आप पौधा तैयार करते हैं नर्सरी में और मुख्य खेत में जब प्रतिरोपित करते हैं तो उससे पहले पौधों को हार्डनिंग करना। हार्डनिंग से मतलब यह है कि जैसे हम कहीं बैठे हैं, जैसे एसी रूम में बैठे हैं और सीधे धूप में नहीं जा सकते, उसी प्रकार क्या है, पौधा जो है बहुत नाजुक रहता है। हम उसको सेवा करते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं और सीधे धूप में जाके लगा देंगे। अगर धूप में जाके लगा देंगे तो वो अपने आप को वो तैयार नहीं कर पा रहा था कि उतने धूप में आप 30-40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप उसको लगाएं। तो इसलिए उसे हार्डनिंग पहले करना जरूरी है। गेंदा के अलावा आप लगा सकते हो सेवंती, लगा सकते हो ग्लेडुलस, लगा सकते हो चाइना स्टार, लगा सकते हो ना, एकर डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी तरह के और कुछ सीजनल है, जैसे पेंजी है, कैलेंडुला है, एंटी राइनम है, फ्लॉक्स है, कार्नेशन है, स्वीट पे है, एकर आप खेती आसानी से कर सकते हो और अधिक से अधिक मुनाफा पास। और एक बात और शामिल करना चाहूँ, आप सरकार की योजना, विभिन्न प्रकार की योजना चलते हैं, वो योजना के फायदा लेके आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बना के जो कट फ्लावर जो हमन बोलथन, जैसे गुलाब हो गए, आपके ट्यूब जरबेरा हो गए, आर्किड हो गए, ऐसे फूल आप अगर करो एकर खेती तो आप दूसरे प्रदेश में भी आप आसानी से इसकी मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं और इनका प्राइस और ज्यादा रहता है। तो आप संबंधित, आपके अगर पास में महाविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं और तकनीकी जानकारी उनसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो उद्यानिकी विभाग से भी आप परामर्श ले सकते हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी दिया डॉक्टर साहब, एक आप मतलब आकाशवाणी परिवार गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार,
0: जय
2: राम राम, राम राम राम भैया। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो आकाशवाणी रायपुर।
2: हाँ हाँ
3: हाँ, मैं पलारी बलौदी से राम सागर शुक्ला बोला था।
2: बताओ शुक्ला जी, आज हमन मन के जिन विषय है शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी,
3: हाँ हाँ
2: हाँ, तो ये विषय से जुड़े आप मन के का जिज्ञासा, का समस्या है?
3: हाँ, अपन बेल के भी पेड़ है उमा बागवानी में, तो बेल पेड़ में ज्यादा मतलब सावन महीना में कीड़ा आ जाते, पत्ता मतलब ज्यादा खाते, का कारण है उमा, का छींटना चाहिए?
2: तो एकर समाधान हमारे विशेषज्ञ मन बतावत है।
0: जैसे शुक्ला जी आपने कहा कि सावन में बेल के पौधे आपके हैं तो उसमें जो पत्ते आ रहे हैं उसमें कीड़ा आ रहा है, तो क्या होता है कि अभी जो सावन में लगातार बारिश होती है तो ऐसे समय में ना जो बेल जिसको हम भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं, तो ये समय पत्ती आने का सबसे उपयुक्त समय रहता है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्तियां उसमें आती हैं और कीड़े जब रहते हैं, जब पत्तियां छोटी होती हैं तो उसको खाने के लिए आतुर होती है, मतलब ये उनके लिए उपयुक्त भोजन रहते हैं, तो उन इस कारण। और दूसरी चीज, मौसम का एक अपना रुझान हो जाता है या एक स्थिति बन जाती है जो कीड़ों के लिए उनके प्रजनन दर को बढ़ाने में सहायता कर, तो जिससे इनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, और चूंकि उनके पास पत्ती के रूप में खाद्य पदार्थ भी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं ऐसे स्थिति में सावन के मौसम में, तो इसलिए ज्यादा आक्रामक रूप से हमें या ज्यादा तादाद में देखने को मिलता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, 5 ml/L के हिसाब से आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते। याद रखिए, इसमें ध्यान रखना है आपको 5 ml/L के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। दूसरी चीज, ये चीज याद रखिए कि जब बारिश का मौसम हो तो उससे बच के रखने, मतलब ऐसे टाइम में बारिश होने की संभावना हो ऐसे टाइम में स्प्रे नहीं करना चाहिए।
3: हाँ, हाँ।
0: जब मौसम खुला हो ऐसे समय में हमें, क्योंकि सावन के मौसम में लगातार बारिश होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखें।

0: ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बताया आप।
1: हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, कौन बोला होगा, कहाँ ले?
2: मैं दक्षिण सितारे बिहार के वैशाली जिला से बोला था।
1: हाँ सितारे जी, का पूछना चाहते हो विशेषज्ञ मन ले? पुष्प के बारे में पूछना है यार, शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी।
2: जी फूल लगाना चाहता हूँ, गेंदा का, गुलाब का, उसके नर्सरी कैसे किया जाए?
1: हाँ तो गुलाब की नर्सरी कौन ढंग से करना है, कैसे करना है, तेला विशेषज्ञ मन बतावत है।
3: राम राम किसान भाई, जैसे आपको गुलाब की, जैसे आपने कहा कि आपको गुलाब की नर्सरी तैयार करनी है, तो गुलाब का जो प्रवर्धन होता है अगर व्यावसायिक रूप से देखें तो हम लोग टी बडिंग बोलते हैं, मतलब आँख के समान जो कली रहता है उससे हम उसका प्रोपोगेशन करते हैं। दूसरी है कि इसमें कटिंग से करते हैं, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई के तने का हम उपयोग इसके प्रवर्धन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि इसके आपको मदर प्लांट खरीदना पड़ेगा, या आप कहीं से कटिंग, जहां संबंधित अच्छे संस्थान हैं और जो कहीं प्राइवेट नर्सरी हैं, तो ऐसे नर्सरी से आप ऐसे पौधे खरीदें। और इन पौधों का आप अगर व्यावसायिक रूप से करना चाहें तो कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं या टी बडिंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है, इसकी खेती आप 7 से 8 साल तक लगातार कर सकते हैं। कुछ आपको उचित प्रबंधन करके आप इसमें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कट फ्लावर के रूप में जाएंगे तो आपको इसके लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओर जाना पड़ेगा, मतलब ग्रीन हाउस पाली हाउस के अंदर इसकी खेती करनी पड़ेगी, और ओपन कंडीशन में खुले वातावरण में करना है तो लूज फ्लावर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी संस्था हो या कहीं से आप पौधा तैयार किया है तो आपका बरसात का समय स्टार्ट होता है या ठंड का समय तक आप आसानी से इनकी कटिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं या टी बडिंग के द्वारा आप पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब हम कटिंग तैयार करते हैं तो रूट ट्रेनर की आवश्यकता होती है, ये भी मार्केट में आपको कम रेट पे आसानी से मिल जाएगा। और इसके लिए आप नर्सरी तैयार करेंगे तो इसके लिए सॉइल लेस मीडिया, जिसको हम आर्टिफिशियल मीडिया बोलते हैं, मिट्टी रहित मृदा मीडिया माध्यम बोलते हैं, ऐसे माध्यमों का, जिसमें कोकोपीट, परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, ऐसे माध्यम का उपयोग करके आप कटिंग आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जो पौधे कटिंग से आप तैयार करेंगे वो कम समय में आपको फूल प्रदान करेंगे।
2: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
1: धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
4: हाँ दीदी, मोर मैं भरे राम राम।
1: राम राम का कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: मैं नवागढ़ के कई जिले में तरह छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था। वहाँ दीदी
1: वर्मा जी के बहुत बहुत स्वागत है। बताओ वर्मा जी,
4: हाँ,
1: आज का प्रश्न पूछना चाहते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले?
4: हाँ जैसे दीदी, हमन फूल के शीतकालीन फूल के खेती करना चाहता था वहाँ, तो एक नर्सरी प्रबंधन और लगा के विधि और ओकर बाद जिसे हमन बीज लेना चाहते हैं, तो यही जम्मू बात पूछे बार फोन लगाए हवा दीदी।
3: राम राम, जैसे आपने कहा
4: राम राम भैया, राम राम।
3: नर्सरी तैयार करना है फूलों की ना?
4: हाँ भैया।
3: हाँ, जैसे आपको नर्सरी तैयार करना है, जैसे नर्सरी आप जिस फूल का चाहें उसके हिसाब से आप तैयारी करें। जैसे आज के दौर में या अभी मार्केट के हिसाब से गेंदा की हो गई, आपको वर्बीना की हो गई, चाइना एस्टर की हो गई, डायंथस की हो गई, इनकी कार्नेशन की हो गई, इन कैलेंडुला की हो गई, इसकी नर्सरी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि नर्सरी हम तैयार करते हैं तो आप नर्सरी खेत में भी तैयार कर सकते हैं और पोट्रे में भी तैयार कर सकते हैं। जब हम इनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अच्छी किस्म के बीजों का सिलेक्शन करें, और जब भी हम इसका प्रवर्धन करना है, नर्सरी तैयार करना है, उससे पहले इसको किसी फफूंदनाशक से उपचार करें। इसके बाद ही हम इसको, चाहे कोकोपीट में हो चाहे जमीन पे हो, उस पे हम लगाएं। दूसरी बात यह है, जब जो पौधे, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ही महीन होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना है, उनको हम चाहे तो हम उसको रेत के साथ उसको मिला के उसकी नर्सरी तैयार करें। और जो भी अगर छोटे महीन बीज हैं तो उनको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही उनको लगाना चाहिए। ज़्यादा गहराई पे लगाएंगे तो उसमें जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे पौधा तैयार होने में दिक्कत होगी। और आगे बात करें कि इसके खेती के बारे में, तो आप उचित समय पे सही तरीके से फील्ड तैयार करें, जो मेन आप

0: का खेत है वो तैयार करें और उस तैयार खेत में जो स्वस्थ पौधे हैं उन्हीं पौधों का प्रतिरोपण करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे पौधा मिले और उससे अच्छी उपज प्राप्त हो सके।
1: ठीक भैया, बहुत सुंदर जानकारी दे डॉक्टर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, आप मन आज हमारे श्रोता मन के फोन कॉल में आए प्रश्न के उमन की जिज्ञासा के शंका के समाधान करे, अतका उपयोगी जानकारी देव कि शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी कौन ढंग से कर सकते हैं, ओकर तैयारी कैसे होना चाहिए, सही बेरा का है, कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, संगे संग पौधों में जन हार्डनिंग का होते, ओकर पोर्ट नर्सरी हम कैसे बना सकथन, ये जम्मो जानकारी आप मन हमर संगवारी मन ला देव, एकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, राम राम।

0: संगवारी हो, अभी सुनत रहिन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज की विषय रहिस पुष्पों की नर्सरी। आप मन के सवाल के जवाब देवत रहिन है डॉक्टर मुकेश कुमार साहू, वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग।
1: संचालन करत रहिन निधि शर्मा और प्रस्तुत करता रहिन शशि प्रकाश पांडे।

0: किसान हम।
1: निधि अब आप रहे कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न पूछे के तो बता देवन संगवारी मल्ला आज के हमार प्रश्न है जैविक खेती में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। संगवारी हो प्रश्न एक बार और सुन ले, जैविक खेती करे में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। ये प्रश्न के जवाब हमार तीर एक हफ्ता के भीतर मेल के माध्यम ले पहुंच जाना चाहिए। मेल भेजे पर हमार ईमेल पता लिख लेवा। हमार पता है संगवारी हो राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
2: निर्मल भैया पांचवी हफ्ता की हमार प्रश्न रही से वर्षा के मौसम में पशुधन में कौन कौन से रोग बीमारी होते। एकर सही जवाब आए थाइलेरिया खुरहा चपका रोग मन होते। और ये प्रश्न के सही जवाब में हमर तीर मेल आए है ये संगवारी मन
1: निधि गांव तेंदु भाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेन कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण शिवा भूपेश दिव्यांश निषाद
2: सिंगारबाड़ी गुटकुले भगत राम पटेल सोनम मानवी पटेल मन
1: लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी
2: मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू मन
1: बठेना पाटन जिला दुरुगले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा पार्थ कश्यप
2: गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना मानवेंद्र और राकेश साहू मन
1: धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल
2: परसा टोला अंबाकर चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया मन है।
1: सही जवाब भैया जम्मू संगवारी मल्ला हमार कुत्ते ले कोरी कोरी बधाई। आज के कृषक मंच बस यहीं तक।
2: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ले मिले जानकारी के अनुसार काली प्रदेश के कतको जगह में हल्का और मध्यम बारिश होए के संभावना है। कल चेतावनी दी गई है कि एक दो जगह में भारी वर्षा और गरज चमक के संग में वज्रपात हो सकत है। अवैया दो दिन तक मौसम ऐसे बने रही और हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना रही। ये रही किसानवाणी प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अब बता दे संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम काली के चौपाल मा गोठबास संग आज के किसान मा भेंट होही ओम प्रकाश सेन गांव निषदा आरंग जिला रायपुर ले संग मा गीत संगीत

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई का कार्यक्रम किसान वाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को है, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अल्ताफ रजा की आवाज में हमीद अंसारी के लिखे इस गीत को। संगीत अल्ताफ रजा और वैष्णव दीवा का है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

आफरीन आफरीन, अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में इस गीत को। इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनाते हैं फिल्म साया का ये गीत। उदित नारायण की आवाज में गाया ये गीत सईद कादरी का लिखा है और अनु मल्लिक के संगीत से सजा।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप। जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, वेव्स ऐप आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी

0: में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम भाई अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म राज का ये गीत। समीर के लिखे बोले संगीत नदीम श्रवण का है।

राज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान

0: प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा

0: या सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघाबेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने

का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं कमर जलाल आबादी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

0: हो गई।
1: आइए सुनते हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है अजीज कश्मीरी ने। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी।

0: करते करते
1: छाया गीत
0: लग जा गले।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है सलील चौधरी, फिल्म का नाम है माया।

0: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
3: अरे अरे अरे रुक

साथियों, अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में वो नखमा जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था सचिन देवबर्मन का। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है असली नकली।

0: प्यार का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीत

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में 16 अगस्त सन 1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नज़र गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौलाकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

दिल्ली में अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चलें जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।

0: मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहबारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।
1: तो

उसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन भी मिला।

सन 1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

सन 1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

इस फिल्म में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया। उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

0: सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणिरत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी। उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।
1: दिल

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज सितारे थे।

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। यहां दिल लेने देने की अदा भी कातिल है, यहां के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
0: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई, जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव, साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया, फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल के निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश। इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा, सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्मा आई, सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न। इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू, संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादा।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

0: सफर।
1: मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वे।

सन 2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

0: थे।
1: हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अभी आप सुने थे विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे आइए सुनते हैं गैर विविध संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम आइए पहले हम आपको सुनाते हैं लकी अली की आवाज में सईद असलम के लिखे इस गीत को।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दिल जलाने की बात करते हो, रेशमा की आवाज में। अभी आप सुने थे इस खूबसूरत गीत को। इस गीत के साथ ही रवि संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं

होता है। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें, और इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में अंजाम के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत है।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस

0: सिचुएशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्री चरण दास ने भी इसे गाया था। और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था। और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी। लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली, तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया, तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया। दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है। और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी। और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

जाने दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, फिल्म हम सब उस्ताद हैं, किशोर कुमार की आवाज़ में गाया ये गीत है।

हम सब उस्ताद हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। असद भोपाली के लिखे बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment